0: Radio Pub.
1: Kia ora, bula salam, namaste, sat sri akal. Main hu abhi aapke saath mein aur jud chuka hu aur lekar aaya hu ek navintam karyakram jabki aaj hai Saturday 16th of May, Radio Pub ka mahol hai. Aise mein abhi se lekar 6 tak hamara aur aapka saath rahega aur saath dete rahenge. Lekar aaya hu dher sara information aapke liye aur iske saath mein dher sari baatein bhi hongi, kuch apni kahenge, kuch aapki bhi sunenge. Ye sabhi kuch hamare saath mein rahega. Sunte rahiye hamare saath mein, keep humming. और इसी तरह से आपको बताते रहेंगे कि आपके आसपास क्या कुछ आज हो रहा है, इस पर भी बातें होंगी. लेकिन अभी के लिए मैं हूं अभी आपके साथ में 104.2 FM साथ में रोवा पर आपका साथ दे रहा हूं. अभी से लेकर 6 तक हमारा और आपका जो बेजोड़ साथ है बना रहेगा.

आप सुन रहे थे उदित नारायण साथ में अलका याग्निक को कार्यक्रम में। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दूं कि इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे आउट हियर इन ओकलैंड सीबीडी। ऐसे में समा बिल्कुल खुशनुमा है और ऐसे में आप भी बाहर निकले हुए हैं शॉपिंग के लिए, तो आपको याद करते हुए चलते हैं और आपको ये भी बता दें कि आज का मौसम आपके लिए काफ़ी जगहों पर बताया जा रहा है कि बिल्कुल सनी ब्राइट डे रहेगा, बिल्कुल आपकी स्माइल की तरह ब्राइट और एकदम चटक। और ऐसे में सनसेट को बताया गया है आज शाम 5:23 PM तक रहेगी और साथ में ओवरनाइट टेम्परेचर्स ठंडी पड़ने वाली है, 7 degrees तक रहेगी। लेकिन यहाँ से आपको एंटरटेन करते रहेंगे, थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, कुछ कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसमें जाकर आप भाग ले सकते हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस हैपनिंग विद अवी ऑन रेडियो पब।

0: Playing Bollywood's biggest hits. Driving you home. The Drive Show with Sandy and Rusby.
1: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
2: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
3: वो भी आई लव यू वाला।
2: मैडम ने पकड़ लिया भी, यहाँ पे किसने बनाया? वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
3: अच्छा आप दिलजीत हो?
2: आए आए बताओगे यार।
0: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pokekoi, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
4: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric Blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
5: It's bonus time at No Leeming. Get a bonus $50 gift card for every $500 you spend on selected products. Don't miss out. Offer valid until Sunday, 17th May. Conditions and exclusions apply. Only at No Leeming.
6: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
7: With a gym personal loan, you can give your old kitchen a makeover, combine multiple debt repayments into one, or get from A to B in a new CAR. And for a limited time, pay zero establishment fee, saving $240. Search Gem Personal Loans and check your personalised rate in under 2 minutes, with no impact to your credit score. Establishment fee waived till May 19th, 2026. Lending criteria, TCs, fees and other charges apply.
8: It pays to switch to Tower. Switch today and get $200 off new house insurance and $100 off new comprehensive car insurance. Use promo code BIGSWITCH. T's and C's and eligibility criteria apply. Switch to Kiwi, switch to Tower.

0: You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूँ। और ऐसे मैं आपको बता दूँ कि ओकलैंड एफसी का जो मैच था, जहाँ पर एडिलेड यूनाइटेड के खिलाफ ओकलैंड एफसी ने अपना जो सेकंड लेग का सेमीफाइनल विन है 3-0 से इस गेम को जीता है और अपने नाम किया है, और इसके साथ में अब ये ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो गेम है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा है ओकलैंड एफसी के लिए, जबकि इनके कोच का कहना है कि इन्होंने जबकि शुरुआत की थी, आपको याद होगा कि ओकलैंड एफसी इज़ वन ऑफ द न्यूएस्ट टीम्स इन द लीग, और जबकि इन्होंने शुरुआत की थी ना तो कोई होम ग्राउंड था, ना तो कोई खास इक्विपमेंट थी इनके पास में टू स्टार्ट ऑफ, लेकिन अब ये ग्रैंड फाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। इसके साथ में जो दूसरी सेमीफाइनल है ये रहेगी न्यूकासल जेट्स और साथ में सिडनी एफसी के बीच में, जो कि आज रात को न्यूकासल में खेला जाएगा। और इस मैच पर डिपेंड करता है कि ओकलैंड अपना जो ग्रैंड फाइनल है कहां पर खेलेगी। अगर जो सिडनी की टीम सिडनी एफसी जीत जाती है तो ओकलैंड यहां पर ओकलैंड में ही अपना ग्रैंड फाइनल होस्ट करेगी, खेलेगी। और अगर जो जीत किसी तरह से न्यूकासल के हो गई तो ओकलैंड को ट्रेवल करना पड़ेगा, मैकडोनल्ड जोन्स स्टेडियम जाकर न्यूकासल से खेलना पड़ेगा। तो ये सभी कुछ ए लीग की दुनिया से जो नवीनतम जानकारियां हैं आपके साथ में बांटते रहे। मूविंग ऑन, आपको बता दें आज जबकि है 16 तारीख में, ऐसे में आज आपका जन्मदिन है तो हमारी ओर से आपको वेरी हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, या फिर आपकी शादी की सालगिरह है आपको हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। तो अगर जो आप इन माइलस्टोन्स को आज सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपको मालूम है 5599 पर ही आपको मैसेज भेजना है, यहाँ से आपको शामिल करते हुए चलेंगे। मैं हूँ अभी आपके साथ में, लेकर आया हूँ ढेर सारा प्यार।
2: Yeah. Radio Pop.

हम रवि के साथ है और आपको बता दूं कि आपके आसपास आज क्या कुछ हो रहा है। तो ऐसे में 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे आप यहां पर जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है एट द मलेओला कम्युनिटी सेंटर 16 वाकोरी प्लेस मेंगरी ओकलैंड में, जहां पर 4:30 PM से ये जो इवेंट है ये शुरू हो जाएगी। टिल 8:30 PM ये इवेंट चलती रहेगी। तो अभी आपके पास में समय है एक ऐसा इवेंट जो बिल्कुल फिजी के हिस्ट्री के लिए, हमारे लिए, आपके लिए एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक मोमेंट रहा है, एक हिस्टोरिक इवेंट रहा है, और इसको रिमेंबर करने के लिए 147 गिरमिट रिमेंबरेंस डे आज इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, इसको यादों में जुड़ने के लिए आपके लिए ये इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको मार्क किया जा रहा है द मलेओला कम्युनिटी सेंटर 16 वाकोरी प्लेस मेंगरी ओकलैंड में। याद रहे 4:30 PM से आपको सिर्फ यहाँ पर जाना है, जहाँ पर ढेर सारे ऐसे रिकॉग्निशन अवार्ड्स दिए जाएंगे जो लोग कम्युनिटी के साथ में जुड़े हुए हैं और अक्सर कंट्रीब्यूट करते रहते हैं कम्युनिटी के लिए। इसके साथ में ढेर सारे कल्चरल परफॉर्मेंसेस रहेंगे। यहाँ पर काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी परफॉर्म करते हैं अपने ट्रेडिशनल अटाया में आकर। इनको भी इनक्रेज करना चाहिए और बिल्कुल कीजिएगा। और यहाँ पर ढेर सारे ऐसे स्पीच भी रहेंगे। तो याद रहे 4:30 PM से ये जो इवेंट है 147th गिरमिट रिमेंबरेंस डे इसको मार्क किया जा रहा है और आपको सिर्फ पहुंच जाना है मलेओला कम्युनिटी सेंटर 16 वाकोरी प्लेस मेंगरी में।

20 मिनट बाकी हैं एक बजने में। मैं हूं अभी आपके साथ में और एक सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। थोड़ा सा इंटरेक्टिव करते हैं इसको आपके लिए, और इस सवाल को सुने और इसका जवाब ज़रूर भेजें हमारे पास में 5599 पर अपने नाम के साथ में। एक ट्रिविया या फिर एक ऐसा यूँ कहें कि एक फ़न क्वीज आपके लिए लेकर आए हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक दूसरे से आपस में मिलती नहीं, एक दूसरे से आपस में मिलती नहीं, आपस में बनती भी नहीं, बीच में दीवार है, फिर भी दोनों मिलकर दुनिया देखती, इतना इन दोनों में प्यार है। एक बार फिर से, एक दूसरे से आपस में मिलती नहीं, बीच में दीवार है, फिर भी दोनों मिलकर दुनिया देखती, इतना इन दोनों में प्यार है। अगर जो आपको जवाब मालूम है तो 5599 पर हमारे पास में ज़रूर भेजिएगा अपने नाम के साथ में, ताकि यहाँ से हमें भी पता चले कि आप कितना ध्यान से हमें सुन रहे हैं और साथ में क्या आपको जवाब बिल्कुल मालूम है या नहीं। तो 5599 इज़ द नंबर जहाँ पर आपको अपने जवाब हमारे पास में भेजने हैं अपने नाम के साथ में। एक दूसरे से आपस में मिलती नहीं, बीच में दीवार है, फिर भी दोनों मिलकर दुनिया देखती, इतना इन दोनों में प्यार है।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या
3: खुश है, बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
5: वीकडेज 6 to 10 a.m.
6: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months, no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
7: Flooring Extra. Adore your floor.
8: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक, सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's अप्लाई। ऑकलैंड इस वीकेंड $100 स्पेंड करो।

हमेशा जुड़े रहते हैं। और आपने फरमाइश की है गाने की, आपके रिक्वेस्ट को बिल्कुल बजाने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर में। और इसके साथ में जो सवाल हमने आपसे किया था और उसका जो जवाब है, जो सवाल तो था, एक दूसरे से आपस में मिलती नहीं, बीच में दीवार है, फिर भी दोनों मिलकर दुनिया देखती, इतना इन दोनों में प्यार है। और हमारे पास में 64561 आपका भी सही जवाब आया। इसके साथ में दर्शिका पापटोई से आप प्रोग्राम सुन रही हैं, आपने भी अपना जवाब लिखकर भेजा है, थैंक यू सो मच। और जस्सी आपका भी जवाब हमको मिल चुका है। इसके साथ में 9771 आपने भी सही जवाब टेक्स्ट किया है। तो जो जवाब है ये आपको चलो गाने में सुनवाते हैं।

0: चाहे आप हम के ढिंचैक 20 को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी. बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव गॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड. कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स.
1: इनजेड पोस्ट is always nearby. With over 560 stores across the country, you can always count on us to keep bringing the services you need close to home. Find your local at nzpost.co.nz.
2: Make your budget go further this autumn at Mitre 10. Stride rubber gym tiles, now only $35 each. Plus warm up with 15% off oil-free column heaters. Ends 27th of May, T's and C's apply. Grab these great deals and more at Mitre 10.
3: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena? Put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.

0: Yo.
1: Big Radio Pop.
0: Yo.
1: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके लिए। और जबकि स्टूडियोज में देखते हैं तो समय के और 1:01 हो चुका है। ऐसे में कारवा अभी भी जारी है रेडियो पब का। हम 104.2 FM साथ में रोवा पर हमें सुन रहे हैं, प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स। आपके लिए नवीनतम गाने, साथ में जानकारियां, लेटेस्ट अपडेट्स बॉलीवुड की दुनिया से भी लेकर आते रहते हैं। लेकिन अभी के लिए आपको बता दें, आज सुबह सुबह जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में गेम हुआ, जहां पर एस्टन विला और साथ में लिवरपूल के बीच में खेल हुई। जबकि ये स्पोर्ट्स बेस्ड रेडियो पब रहता है, आपको अक्सर दौरा कराते रहते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में। तो लिवरपूल साथ में एस्टन विला के बीच में जो खेल हुई, इसमें लिवरपूल की हार आज सुबह सुबह 4-2 से हुई। और अगर जो आप फुटबॉल फॉलो करते हो या फिर आपकी इसमें दिलचस्पी है और शायद आप लिवरपूल के फैन हो, तो आपको मालूम होगा कि अब ये चैंपियंस लीग के लिए थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर रही है। जबकि एस्टन विला क्वालिफाई हो चुकी है चैंपियंस लीग के लिए बाय विनिंग द मैच अगेंस्ट लिवरपूल। और इस विन के साथ में उन्होंने अपना जो चैंपियंस लीग नेक्स्ट सीजन के लिए जो अपना स्पॉट है, ये कन्फर्म कर लिया है। और जो पहला गोल था एस्टन विला के लिए, ये एक यूं कहें कि एक सेट पीस प्ले था। आपको मालूम होगा कि ये जो सेट पीस प्ले रहती है, ये अक्सर ट्रेनिंग ग्राउंड्स में लगातार कोशिशों के बाद में इसको ट्राई आउट किया जाता है। एक ऑर्केस्ट्रेटेड मूव रहती है, कोरियोग्राफ्ड मूव रहती है, कि सभी को मालूम होता है कि किस तरह से बॉल को प्ले किया जाएगा, कौन कौन से प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। सभी को बिफोरहैंड मालूम होता है उस टीम को कि कैसे अपने अपने काम को, अपनी ड्यूटी को वो कैसे निभाएंगे। तो इसी तरह से सेट पीस प्ले के साथ में एस्टन विला ने जो अपना पहला गोल है ये स्कोर किया, और उसके बाद में जैसे लिवरपूल क्रम्बल ही हो चुकी है। और बीबीसी फुटबॉल को बताते हुए रिपोर्ट में लिवरपूल के जो मैनेजर है, इन्होंने कहा है वी जस्ट क्रम्बल्ड। तो ऐसे में अगर जो इंग्लिश प्रीमियर लीग टेबल की ओर देखते हैं, तो लिवरपूल अभी 5th प्लेस पर है। और अगर जो बोर्नमाउथ और दबाव नहीं डालती है विन लेते हुए अपने रिमेनिंग मैचेस में, तो लिवरपूल शायद टॉप 5 टीम्स में क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर जो बोर्नमाउथ भी अपने मैचेस को लगातार जीतती रही, तो लिवरपूल पर जो प्रेशर है चैंपियंस लीग को स्पोर्ट को हासिल करने के लिए और भी बढ़ती जाएगी। तो ये सभी कुछ इंग्लिश प्रीमियर लीग की दुनिया से आप तक लेकर आते रहते हैं, ताकि आप भी अपडेटेड रहें और भी कुछ स्पोर्ट्स के बारे में आपसे शेयर करते रहेंगे। लेकिन इस हवा पर मैं हूँ अभी आपके साथ में, 6 तक हमारा और आपका साथ बना रहेगा। आपको भी कुछ सुनना है, आपकी भी कुछ डेडिकेशंस है, 5599 पर जरूर हमारे पास में टेक्स्ट कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू प्ले देम फॉर यू।

हम पर आप सुन रहे रेडियो पब, मैं हूं आपका साथी अभी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए राजेश ने डेडिकेशन में कहा था कि हमारे लिए मोहरा से ये गीत आप बजाइएगा, तो इस गीत को आप सुनिएगा। जबकि पंकज उदास ने और साथ में साधना सरगम ने इस गीत को गाया है। और अगर जो इस गीत के बारे में बात करें ना, किसी की ब्यूटी को अगर जो आपको अप्रिशिएट करना हो या फिर उसकी ब्यूटी को, सुंदरता को लेकर आपको कोई बातें कहनी हो या फिर करनी हो, तो इस गीत से ज़्यादा कोई और इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। तो इस गीत को आप सुनिएगा। जबकि अपने समय की एक बड़ी ही लाजवाब फिल्म और साथ में इस गाने को भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया था, एक बार फिर आपके लिए इसे बजाने जा रहे हैं प्रोग्राम में। अगर जो आपकी भी कोई फरमाइश है तो 5599 पर अपने डेडिकेशंस हमारे पास में भेज सकते हैं।

0: हम पर खूबसूरती को, ब्यूटी को बयां कर रहे थे पंकज उदास साथ में साधना सरगम। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक प्यारा सा मैसेज आया हमारे टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर। गुड आफ्टरनून, आपने लिखा है, धमाकेदार शो है, आप इंजॉय कर रही हैं। और क्वीन, आपने अपना मैसेज भेजा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा और कुछ ही देर में और भी सारे क्वीज आपके लिए लेकर आएंगे, कुछ बॉलीवुड से भी अपडेट्स रहेगी, ये सभी कुछ हमारे साथ में। बस कीप हमें।
1: जय माता जी, માતા જી ના હમ કહીને કહું છું કે વા ફરે, વાદળ ફરે ને વાયરો ફરે, પણ એક વાર બોલ્યા પછી મારા મિત્રો, આ મિત્રો કદી ના ફરે કે હાલો ને

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
0: Yo. Suta sa chora.
1: You're listening to Avineet.
2: जी हाँ, मैं हूँ अभी और मैं हूँ आपके साथ में टिल सिक्स। ऐसे में आपको बता दें कि दो पर आपके लिए समाचार रहेंगे और समाचारों में पहले आपने सुना होगा और अगर जो नहीं भी सुना होगा तो एक बार फिर आपसे बता दें कि आज सुबह सुबह एक पेशेंट की मृत्यु हो गई होब्सनविल मरीना में कायक करते हुए, जबकि उन्होंने फेस किया एक मेडिकल इंसिडेंट। और इस पर मीडिया रिपोर्ट्स की कहना है कि काफ़ी इमरजेंसी सर्विसेज ने रिस्पोंड किया ऑन द वाटर, साथ में बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सेंट जॉन ने कहा है कि ऐसा एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। ऐसी इसी तरह के जो समाचार है, जो लेटेस्ट अपडेट्स है आपके लिए, दो पर एक बार फिर से रहेंगे इन द न्यूज़।

रेडियो पम्प। रेडियो पम्प में मैं हूँ आपका साथी। अभी कुछ बातें करते हैं हंसी के बारे में। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बहुत खुलकर हंसते हैं। हम हमेशा इनको देखते हैं और कहते हैं कि दिल खोल कर ये हंसते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ऑन द अदर हैंड जो हंसने में काफ़ी कंजूसाई करते हैं। यानी कि आप उनको एक बढ़िया से बढ़िया मजाक सुना दो, कोई चुटकुला सुना दो, कोई जोक भी सुना दो, जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। और जहाँ पर लोग इसको सुनकर काफ़ी जगह पर लोटपोट भी हो जाएंगे हंसते हंसते, लेकिन ये इनका रिएक्शन बड़ा धीमा सा होता है। और अक्सर इनको ये कहा जाता है ना साइकिस्टिकली कि आपको हंसने के लिए, हंसाने के लिए पैसे लगते हैं। इसी तरह से आप कंजूसाई करते हैं हंसने में। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो हंसने में काफ़ी कंजूसाई करते हैं, या फिर उनको अक्सर आप देखते हैं तो चेहरे पर काफ़ी समय 12 बजे रहती है और काफ़ी ग्रंपी इनका आउटलुक होता है। लेकिन हंसने के बारे में अगर जो बातें करें तो हंसने के काफ़ी बेनिफिट्स है। ये कहा गया है कि अ हेल्थी लाफ इज़ अ हेल्थी हार्ट। यानी कि आप जितना खुलकर हंसते हैं, अपने मूड को रिलैक्स करते हैं, इससे आपको कहीं ना कहीं हेल्थ के मामले में काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। ये एक इंटरनल एक्सरसाइज है जो आपके ब्लड वेसल्स को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सरसाइज दिलाती है टू एंड हेल्प्स टू इंक्रीज ब्लड फ्लो, और साथ में आपके हार्ट, आपके कार्डियो वेस्कुलर इश्यूज़ को भी दूर रखती है। और इसी तरह से आप एक अच्छे मूड में भी रहते हैं। कहीं ना कहीं आफ्टर हेक्टिक वीक, हेक्टिक डे, आपको हंसने का मौका मिलता है, रिलैक्स करने का मौका मिलता है। तो ये सभी कुछ बातें आपको बता रहे थे ताकि आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें हमारे साथ में। लेकिन आपको एक बॉलीवुड की अभिनेता की हंसी सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कुछ खुल के हंसते हैं। तो किसी फिल्म की ये हंसी है जहां पर इस एक्टर ने स्क्रीन पर एक फुल दिल खोल कर हंसी हंसा था, और इसी क्लिप को आपको सुनवाने जा रहे हैं। और 10 सेकंड्स का ही ये क्लिप है, तो आपको जल्द से पहचानना होगा कि किस एक्टर की ये हंसी है, और जवाब आपको 5599 पर हमारे पास में भेजना होगा। तो सुनिए और जवाब ज़रूर भेजिएगा कि आपको लगता है कि किस एक्टर की ये हंसी है बॉलीवुड की दुनिया से। हाँ भाई, तो ये किस एक्टर की हंसी है जो इतना दिल खोल कर हंस रहे हैं, और हंसने के लिए आपको भी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, अगर जो पता लगा तो 5599 पर ज़रूर हमारे पास में मैसेज कीजिएगा कि किस एक्टर की ये हंसी है। अगर जो आपको जवाब पता लगता है तो 5599 पर हमारे पास में अपने नाम के साथ में मैसेज कीजिएगा, और इसी तरह से हमारे साथ में भी दिल खोलकर हंसते रहिएगा।

0: Playing Bollywood's biggest hits. You get money, get cash. New Zealand's meanest word game is here. Think you're a Kiwi word wizard? Put it to the test with Turtle and be in to win $100 a day. Each day, guess a Kiwi word, saying or phrase. Every game equals one entry. And if you answer fast and avoid the hints, you'll score a bonus entry. With $7,000 up for grabs, the more days you play, the better your odds. So what are you waiting for? Jump in and have a crack. Only on Rover.
1: At IKEA, turn clutter into calm. With our wide range of storage solutions. Because behind every mess, every avalanche of toys is a new possibility. Shop in store or at IKEA.co.nz.
2: IKEA.
3: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, e-waste हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland.gov.nz/where-it-goes पे। Tamaki Turuki, all together Auckland.
4: Reliance Ventilation System.
5: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
4: Moisture और ventilation का problem लगता है.
5: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
4: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
6: Contact Reliance Ventilation System on 0800-787-111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.
0: The beat of Bollywood.
7: World's best. Hamari koi branch nahi hai.
0: Yo. Big Radio Pub.
8: जी हाँ, रेडियो पब में मैं हूँ अभी आपके साथ में, और चलो एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं ये खुलकर हंसी. हाँ, तो इतना खुलकर आप भी हंसिएगा, जबकि वीकेंड है तो ऐसे में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. ढेर सारे कॉल आए हमारे पास में, और जी हाँ, आपने जितने लोगों ने मैसेज किया है, आप सही पहचाना आप सभी ने. और हमारे पास में आर्चल ने वेलिंगटन से मैसेज किया है, आपने कहा है ये गोविंदा की हंसी है. और कृष्ण, आपने कहा है कि ये जो एक्टर है ये गोविंदा है जो हंस रहे हैं. और इसके साथ में एनजी, आपका भी जवाब आया है. और इसके अलावा विक्रमजीत, शुक्रिया दोस्त आपके मैसेज के लिए, आपका भी जवाब हमको मिला है और बिल्कुल सही अनुमान आपने भी लगाया. इसके साथ में मधुरा, आपका भी जवाब मिला है हमको, आपने भी गोविंदा ही कहा है. संजना, आपने भी सही अनुमान लगाया है. इसके साथ में ढेर सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस आए हैं. शायल ने भी हमारे पास में मैसेज किया है. इसके साथ में ऐश, आपका भी जवाब मिला है. रविंदर, आपने भी सही जवाब भेजा है. इसके साथ में निशा, आपका भी जवाब हमारे पास में सही पहुंचा है. साथ में जबीना, आपने भी सही अनुमान लगाया है. और इसके अलावा कुनल, आपने भी जवाब भेजा हमारे पास में और गाने की रिक्वेस्ट की है. तो जी हाँ, बिल्कुल सही, ये जो हंसी थी ये गोविंदा की ही थी, एंटरटेनर ऑफ द डिकेड. और साथ में बीबीसी में एक समय पर बीबीसी में इनको एक लिस्ट तैयार किया गया था, टॉप एंटरटेनर्स ऑफ द मिलेनियम, जिसमें अमिताभ बच्चन और साथ में गोविंदा, ऐसे ही दो कलाकार थे जिनके नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए थे. तो अभी तो काफ़ी दिनों से ये बड़े पर्दे पर दिख नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी आते थे एक धमाल मचाते थे स्क्रीन पर. और कुनल, आपकी फरमाइश पर जो आपने गाना रिक्वेस्ट किया था, अब हम इनको बजाने जा रहे हैं आपके लिए खास. आप जितने लोगों ने हमारे पास में मैसेज किया है, थैंक यू सो मच.

0: रेडियो पब।
1: हाँ, पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूँ अभी आपके साथ में और ये है रेडियो पब का फलसफा। और दो पर आपके लिए बिल्कुल समाचार रहेंगे, इसी तरह से हमारे साथ देते रहिएगा।
2: नॉनस्टॉप बॉलीवुड,
3: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं।
2: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स।
4: वो दिन जब मोहब्बत खत्म में होती थी।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

0: Radio Pub. You're listening to Avineet.
1: जी हाँ, मैं हूँ अभी आपके साथ में और इसी तरह से आपका साथ देता रहूँगा 6 तक, और साथ मिलकर इस सफ़र को तय करेंगे। हम आप तक पहुँच रहे हैं, हमारी आवाज़ अब तक पहुँच रही है रोवा ऐप के द्वारा और साथ में 104.2 FM पर। इस हवा पर आपने अभी अभी हमको ज्वाइन किया है, आपका खास स्वागत करते हैं, आपको वेलकम करते हैं। और जितने हमारे दोस्त लिसनर्स सुबह से या यू कहें 12 बजे से हमें सुन रहे हैं, आपका तहे दिल से एक बार फिर से वेलकम बैक। और इसी तरह से साथ मिलकर आपके लिए लेकर आएंगे कुछ और लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़, इन्फॉर्मेशन, ये सभी कुछ इस आवा पर रहेगी। लेकिन इस आवा की शुरुआत करते हैं एक गाने को हमने डिस्कवर किया है सिस्टम पर, जिसका नाम है विंडो तले। अगर जो आप इस गाने को यूट्यूब पर देखेंगे, जो जोड़ी है क्या नाचती है इस गाने पर, तो इसे इंजॉय कीजिएगा और जब समय मिले इसे यूट्यूब पर भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा।

0: हाय हाय हाय हाय
1: नागिन से बल खाके

जी हाँ, आप सुन रहे थे सपना अवस्थी को प्रोग्राम में। और आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, जबकि सुपर रग्बी का जो मैचेस है इस राउंड में, आज 4:35 PM पर फिजियन ड्रुआ विल टेक ऑन वराटाज, और ये जो खेल रहेगा HFC स्टेडियम सुबह फिजी में ही रहेगा। आप अगर जो सुपर रग्बी फॉलो करते हो तो आपको मालूम होगा कि फिजियन ड्रुआ को उसके होम ग्राउंड में हराना एक बड़ी ही मुश्किल बात है, और ये मैच काफ़ी अहमियत यानी कि इम्पोर्टेंस रखती है, क्योंकि वराटाज अभी के लिए पूल जो टेबल है इस पर ये नंबर 8 पर है, उसके साथ में ड्रुआ इज ऑन 9th, और जबकि प्लेऑफ्स के लिए टॉप 8 टीम्स ही क्वालिफाई होते हैं। तो फिजियन ड्रुआ को आज वराटाज को बिल्कुल हराना होगा ताकि ये वापस टॉप 8 में आ सके और फिर प्लेऑफ्स के लिए ये मेक कर सके। तो अगर जो आप सुपर रग्बी फॉलो करते हो तो आप हमें बताइए आपको क्या लगता है कि फिजियन ड्रुआ और साथ में वराटाज के बीच में जो खेल है, इसमें आज परिणाम क्या हो सकती है, जो रिजल्ट है क्या हो सकते हैं, किसके फेवर में ये मैच आज एंड होगा। तो वराटाज और फिजियन ड्रुआ के बीच में जो खेल है आज 4:35 PM पर है, उसके साथ में ब्लूज और हरिकन्स के बीच में 7:05 PM पर दिस इवनिंग ये खेल रहेगा। और अगर जो ब्लूज और हरिकन्स की ओर देखें, ये दोनों टीमें नंबर 1 और नंबर 3 के पोजीशन पर है। नंबर 1 पर हरिकन्स है, नंबर 3 पर ब्लूज है, और इनके बीच में कुछ 7 पॉइंट्स का गैप है। तो आज का जो खेल है, अगर जो बोनस पॉइंट से ब्लूज जीत जाती है तो काफ़ी करीब आ जाएगी। और इसके साथ में एक और एक जो खेल है रात 9:35 PM पर, फोर्स वेसेस रेड्स ये रहेगी। तो ख्याल रहे फिजियन ड्रुआ और वराटाज के बीच में मैच, उसके साथ में ब्लूज और हरिकन्स के बीच में, एंड फॉलोड बाय फोर्स एंड रेड्स।

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Real South Indian taste ka craving hai? Try karo Kashish Foods Dosa Batter. Freshly made in New Zealand, stone ground for that authentic texture. Soft, fluffy idlis or perfectly crispy dosas. Har bar. Classic ho ya ragi. Multigrain ya medu vada batter. Sab milega. Aur haan, buy any Kashish Dosa Batter, any size or pao 250 grams ginger garlic paste bilkul free. Limited time offer 31st May tak. Kashish Foods. Eat better, live better.
2: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. Offer ends Sunday 17th of May. Don't miss out. On now at Mitre 10.
3: Purani gaadi aur mehenga fuel kab tak chalega? Switch to Leap Motor C10 or B10 Ultra Hybrid or Electric. Sirf 44,990 plus on-road se shuru. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
4: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो बोली बस मेरा फोकस है
5: हाँ। अच्छा
4: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
5: मिसेस सिंह
6: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
3: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहूहू कॉल 09281-3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
7: Professional Financials है साथ आपके लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे नो ब्रोकर चार्ज बस ट्रस्टेड एडवाइस हर डील बनाए परफेक्ट राइट
8: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक
7: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो सब कुछ मिलेगा यही अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL T's and C's लेंडिंग एंड क्रेडिट क्राइटेरिया अप्लाई
9: Join the Great Big Balance Check at New World. Whether it's treating yourself to a chocky bar or treating the whole fam to dinner, you could have New World dollars waiting to spend. Check your balance in the New World app or ask a checkout to spend your New World dollars today. Only with Club Card. Only at New World. T's and C's apply.

जी आप सुन रहे रेडियो पब, अभी का साथ है। और आपको बता दें कि जब आप रोवा पर हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, इसके साथ में हमारे हम 104.2 एफएम के फेसबुक पेज पर आप हमको फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर ढेर सारे कॉम्पिटिशन्स आपके लिए रन किए जाते हैं। ऐसे ही रोवा पर चडल का जो गेम है ये चल रहा है, अभी आपको बताते आ रहे हैं कि एक ऐसा गेम, एक ऐसा खेल जहाँ पर आप $100 डेली कैश इनाम जीत सकते हैं। तो अगर जो आपके पास में भी समय है इसे ज़रूर खेलिएगा। आपको क्लूज दिए जाते हैं और उसके बाद में आप बेस्ड ऑन दोज क्लूज आपको सोल्व करना होगा कि कौन सा फ्रेज है या फिर कौन सी सही है। ये सभी कुछ आपके पास में मौका रहता है और जितनी बार आप खेलेंगे उतने ज़्यादा मौके हैं आपके जीतने के लिए। तो $100 का जो इनाम ये डेली शेड्यूल पर आपके लिए एक रिवॉर्ड की तरह इंतज़ार करता रहता है।

हाँ, आशिकी के बारे में बात करते हुए आप सुन रहे थे राहत फतेह अली खान को अपने सुरीले अंदाज में आपके लिए आए थे। और जबकि बातें आशिकी की हो रही है तो इसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आशिक कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। आशिक कभी मरता नहीं, जिंदा दफनाया जाता है। कब्र खोल के देख लो, आशिकी के इंतज़ार में ही पाया जाता है।

रेडियो पब। जी हाँ, रेडियो पब में मैं हूँ अभी आपके साथ में। और आपको बता दूँ, जबकि ये मई का महीना है तो इट्स एनजेड म्यूजिक मंथ, और ऐसे में काफ़ी लोकल आर्टिस्ट को हम प्रोत्साहन यानी कि एनकरेजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं विद बेक योर बैकयार्ड बीट्स, जहाँ पर आपको एज अ लिसनर अपना काम करना होगा, जबकि वीकडेज आपके लिए प्रेजेंट किया जाएगा इन आर्टिस्टों की आवाज़ में गाने, और आप इनको वोट कर सकते हैं बाय टेक्सटिंग ऑन 5599 विद द कीवर्ड MM, यानी कि डबल एम लिखकर आप भेज सकते हैं। और जिस भी आर्टिस्ट को आप सुनना पसंद करते हैं, इनके गाने को आप पसंद करते हैं, आप उनके लिए वोट कर सकते हैं। और जो आर्टिस्ट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनमें हैं जसराज बसरा और साथ में सेंसी प्रभाकर, और इसके अलावा रांझा राजन, ये भी एक कलाकार है, आर्टिस्ट है, इसके साथ में सहोत विजन। और साथ में आपके पास में मौका है कि सोशल मीडिया साथ में ऑन एयर भी आप हमारे पास में टेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर वोट कर इन लोकल आर्टिस्ट को और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जबकि आपके वोट्स पर डिसाइड होगा टॉप 3 आर्टिस्ट

जी हाँ, हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और मैं हूँ अभी आपके साथ में रोवा से। आप हमें सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है या फिर 104.2 FM पर। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आपको बता दें, फ्लाई अवे फ्रेंजी जो हम का प्रमोशन था, ये 15 मई तक ही था। अब इसका जो ड्रॉ है, इसके विनर का जो ऐलान है, ये नेक्स्ट वीक यानी कि कमिंग वीक रहेगा। आपने बड़े ही मेहनत के साथ में, शिद्दत के साथ में इस गेम को खेला, इस प्रमोशन में भाग लिया। तो आपको बता दूँ कि इसका जो अनाउंसमेंट है विनर का, ये अगले वीक होने जा रहा है। तो कीप वेटिंग एंड कीप लिसनिंग फॉर दिस स्पेस। और ऐसे में आप तक पहुंचाएंगे कि कौन विनर्स ठहरे हैं, अगले ही वीक में आप तक ये इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा।

रेडियो पब में मैं हूं अवीन. इट्स 9 मिनट्स अवे फ्रॉम 3 और हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं. अश्विन अपनी प्यारी सी फैमिली के साथ में ट्रेवल कर रहे हैं और हम के साथ में जुड़े हुए हैं. आपका खास स्वागत करते हैं अश्विन, हमेशा हमारे साथ में हो जाते हैं बिग ब्रदर, और इसी तरह से साथ देते रहिएगा. और अगला जो गाना है ये सुनाने से पहले आपको बता दें कि फिल्म कांटे आई थी जिसमें आपने संजय दत्त और साथ में काफ़ी अन्य कलाकारों को देखा था. अमिताभ बच्चन थे, साथ में महेश मांजरेकर जैसे कलाकार थे, लकी अली भी थे. तो इस फिल्म को बनाने से पहले संजय गुप्ता जो कि फिल्म के डायरेक्टर थे, इन्होंने इन्विजन किया था, सोचा था कि इस फिल्म में कोई गाना नहीं रखेंगे. लेकिन फिर आनंद राज आनंद ने उन्हें ऐसे ऐसे गाने सुनाए कि उनको गाना डालना पड़ा. तो उसी फिल्म से ये गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स कीप काम बिकॉज़ पंजाबी स्वैग इज ऑन
2: माजे दिए मुंह बत्ती है पहले दिनों तेरे उत्ते आँख रखिए तेरे बिना एरिए च और कुड़ी दा ना दल मंगिए

0: Streaming on Rover.
1: The Specsavers Specstraver Games at Storewide Sale is on now.
2: Phew, bit of a tongue twister, hey?
1: Get any two pairs of glasses storewide, even designers, for only $299. Save up to $200. Only for a limited time. Should have gone to Specsavers. Include single vision lenses, conditions apply.
3: The bell has gone, but is the day really over? Between sports meetups, play dates, homework, and late shifts, you need to be putting in the right stuff. Packed with calcium, vitamins, and protein, grab some Anchor. Real milk, real good.
4: Tired of compromising between taste and nutrition? Introducing Amma's Foods Multigrain Dosa Batter. Made with 8 super grains, it's packed with the goodness your family deserves.
5: Busy subah ho ya shaam ka jaldi ka khana, Amma's Foods Multigrain Dosa Batter banaye. Har meal healthy aur delicious. High protein, rich in fiber aur swaad se bharpoor. Ye hai har ghar ka best choice. Amma's Foods Multigrain Dosa Batter, 100% authentic aur maa ke pyar jitna shuddh. Aaj hi kare try. Aapke nazdeeki store mein uplabdh hai. Swaad bhi, sehat bhi.
6: Bollywood ka asli blockbuster.
7: Pure shehar pe kabza hoga, raaj hoga.
6: Playing Bollywood's biggest hits.
7: Yo.
6: Radio Pub.
7: Yo.
6: You're listening to Avineet.
8: जी हाँ, रेडियो पब का आप मजा ले रहे हैं. मैं हूँ अभी आपके साथ में. एंड वी आर हाफ वे थ्रू द शो, देखते ही देखते. और आपके लिए हमने हम फेसबुक पेज पर अपना एक वीडियो अपलोड किया है, जाकर चेकआउट कीजिए. आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ज़रूर कमेंट्स में आप इस पर अपने जो ओपिनियन से डाल सकते हैं. और इसके साथ साथ, जबकि रेडियो पब में अक्सर हम स्पोर्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि क्रिकेट की दुनिया में एक 15 साल का खिलाड़ी है जो खेलता है राजस्थान रॉयल्स के लिए इन द इंडियन प्रीमियर लीग IPL में. जी हाँ, 15 साल का प्लेयर है और काफ़ी धूम मचा रहा है. खेलता है राजस्थान रॉयल्स के लिए इन द इंडियन प्रीमियर लीग, और साथ में इंडिया अंडर 19 में भी ये खेल चुके हैं, शामिल हो चुके हैं. तो अगर जो आपको इनका नाम मालूम है, एक 15-year-old प्रोडिजी जिसे कहते हैं, क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी लोगों को चकित कर दिया है अपने खेल के साथ में. और इनका नाम 5599 पर ज़रूर भेजिएगा, जो खेलते हैं जैसे कि हमने कहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए इन द IPL. तो अगर जो आपको मालूम है किस खिलाड़ी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो 5599 पर ज़रूर मैसेज कीजिएगा.

0: Bollywood.
1: World's best, हमारी कोई ब्रांच नहीं है.
2: हाँ, रेडियो पब में हम बातें कर रहे थे एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिन्होंने तहलका मचा दिया है क्रिकेट की दुनिया में, और जबकि ये कुछ 15 साल के ही उम्र के हैं और आईपीएल में बहुत ही अच्छा खेल दिखा रहे थे, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. इनको सही पहचाना है सपना ने, साथ में 3995 और साथ में 5111. ये कोई और नहीं बल्कि ये है वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के हैं ओरिजिनली, लेकिन अभी आईपीएल की दुनिया में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे हैं और तहलका मचा रहे हैं, यानी कि धूम मचा रहे हैं. और इनके बारे में अगर जो कुछ स्टेट्स के बारे में बात करें तो यंगेस्ट आईपीएल डेब्यूटेंट, 13 साल की उम्र में इन्होंने करोड़ों की डील साइन की थी राजस्थान रॉयल्स के साथ में. और ट्रिविया की तौर पर आपको बता दें कि पहली बॉल जो इन्होंने फेस किया था आईपीएल में सीधा सिक्स मारा था, और ऐसे में यंगेस्ट सेंचुरियन है, यानी कि एट द एज ऑफ 14 इन्होंने कुछ 38 बॉल्स में ही 101 रन्स बनाए थे गुजरात टाइटंस के खिलाफ. और ऐसे बहुत ही अच्छा खेल ये दिखा रहे हैं, और इनके बारे में ये बताया जा रहा है क्रिकेट एक्सपर्ट्स की कि काफ़ी ब्राइट फ्यूचर इनका लग रहा है. और ऐसे में यही चाहेंगे कि सूर्यवंशी, एक नाम भी इतना दमदार कि वैभव सूर्यवंशी, इसी तरह से खेल खेलते रहें और भी ज़्यादा नाम आगे चल के ये करें क्रिकेट की दुनिया में. और आई हैव अ फीलिंग कि इनको, इनके बारे में आगे सुर्खियों में और भी सुनने वाले हैं. तो जबकि बातें हो रही थी हमारे काम पर क्रिकेट प्लेयर्स के बारे में, तो यहाँ पर चर्चा का विषय वैभव सूर्यवंशी भी रहे. तो स्पोर्ट्स की दुनिया में ऐसे ऐसे खिलाड़ियों के बारे में भी बात करते रहते हैं जो कहीं ना कहीं मेहनत से, अपनी लगन से अपना नाम कर रहे हैं.

हम पर यह रेडियो पब, और रेडियो पब में आपके लिए लेकर आते हैं काउच कोच। जी हाँ, काउच कोच यानी कि जो काउच पर बैठकर कुछ गेमों के बारे में, गेम्स के बारे में आपको बता सकता है, आपके साथ में अपने ओपिनियंस शेयर कर सकता है। तो आज इस सेगमेंट में हम बातें करेंगे एफए कप के बारे में, जो ये खेल है कल सुबह 2 पर चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी के बीच में होने जा रहा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉम्पिटिशन्स अराउंड इन इंग्लैंड, एफए कप, और इसका जो फाइनल है कल सुबह 2 पर रहेगा। और ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच रहेगी दोनों टीमों के लिए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के लिए अगर जो देखा जाए तो शायद ईपीएल का जो टाइटल है ये इनके हाथ से निकल चुका है या फिर निकल जाएगा, जबकि आर्सेनल के पास में ज़्यादा चांसेस है इस टाइटल को जीतने के लिए। और इसके साथ में मैनचेस्टर सिटी अगर जो सीज़न को कैप करे तो जितने ज़्यादा टाइटल्स आप जीतते हैं उतनी ही सक्सेसफुल आपकी सीज़न रहती है। और जबकि सिटी के पास में EFL कप यानी कि कराबाओ कप ये ऑलरेडी जीत चुके हैं, इसके साथ में अगर जो FA कप ये जीत जाते हैं तो दो टाइटल्स, दो ट्रॉफीज इनके हाथ लग जाते हैं इस सीज़न के लिए। एंड एक आउटसाइड चांसेस है टू विन द प्रीमियर लीग, हालांकि कम है लेकिन आउटसाइड चांस है। तो ऐसे में सिटी इस ट्रॉफी पर अपना जो क्लेम है ये बिल्कुल देना चाहेगी, दावा देना चाहेगी। इसके साथ में चेल्सी की पोजीशन को देखें तो इनके लिए जो इंग्लिश प्रीमियर लीग की सीज़न थी ये काफ़ी बुरी थी, जबकि अभी तक ये 9th पोजीशन पर है और काफ़ी समय इन्होंने अपने कोचेस को भी चेंज किया है। तो इसके लिए शायद अगर जो देखें तो फेवरेट्स बताया जाता है इस गेम के लिए मैनचेस्टर सिटी फॉर टुमारो मॉर्निंग, और चेल्सी शायद इस एफ ए कप को अपने नाम नहीं कर पाती। लेकिन फुटबॉल इज़ अ फनी गेम, यहाँ पर अक्सर कुछ ना कुछ उटपटांग हो जाता है। तो कल सुबह 2 पर ये खेल रहेगा एफए कप फाइनल का, और इसका रिजल्ट आपके साथ में शेयर करेंगे कल 12 पर लेकर आएंगे जब जस्ट चिल।

0: Yo.
1: Big Radio Pub.
0: Yeah. Yo.
1: You're listening to Avineet.
2: मैं अभी आपके साथ में कदम से कदम मिलाकर चल रहा हूं और चलता रहूंगा टिल सिक्स। ऐसे में आपको बता दें कि आज टेस्ट लोटो का जो ड्रॉ है $15 मिलियन का, अगर जो आपने अभी तक टिकट्स नहीं लिए अपनी तकदीर आजमा लीजिए और 7:30 बजे तक आपके पास में मौका है टू बाय यू टिकट्स एंड बी इन द लकी ड्रॉ। हु नोज, कौन जानता है कि कब क्या हो और आपके हाथ में कौन सा इनाम लग सकता है और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो इसको जीतने के लिए बी इन द ड्रॉ और टिकट्स ज़रूर ले लीजिएगा।

हम पर रेडियो पब में मैं हूँ अभी और हंसी मजाक के साथ में कुछ सीरियस बातें भी हो जाती है यहाँ पर हमारे साथ में, जबकि एजुकेशन मिनिस्टर एरिका स्टेनफोर्ड ने यह ऐलान किया है कि ईयर 2028 से शायद कुछ एजुकेशन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया जाए जहाँ पर एनसीईआरटी को हटाकर एक नया सिस्टम लाया जाएगा जहाँ पर स्टूडेंट्स को असिस्ट किया जाएगा। और इसको बताया गया है कि न्यूजीलैंड सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन NZCE फॉर ईयर 12 स्टूडेंट्स और साथ में न्यूजीलैंड एडवांस सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन फॉर ईयर 13 स्टूडेंट्स। और न्यू सिस्टम के नीचे जो स्टूडेंट्स ईयर 12 और 13 में रहेंगे उनको एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स एनुअली पढ़ने पड़ेंगे और इसमें से क्वालिफाई होने के लिए मिनिमम 3 सब्जेक्ट्स को पास करना पड़ेगा। तो जी हाँ, कुछ लोग थे शायद ना खुश थे जो NCERT का सिस्टम था, तो अब ये बदलाव आ रही है और एजुकेशन सिस्टम में 2028 से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और आपके लिए चार पर समाचार भी रहेंगे।

रेडियो पब। रेडियो पब में मैं हूँ अभी आपके साथ में। और कम्युनिटी न्यूज में आपको बता दें, श्री वेंकटेश्वरा देवस्थानम चैरिटेबल ट्रस्ट ये लेकर आ रहे हैं आपके लिए भोजन मेला द फूड कार्निवल, जो कि रहेगा इसी संडे यानी कि कल 11 बजे दिन से लेकर 4 बजे शाम को। आपको सिर्फ जाना है 378 अरारीमू रोड रामा साउथ ओकलैंड, और यहाँ पर ढेर सारे फीचर्स एंड अट्रैक्शंस आपके लिए। फ्री एंट्री है, साथ में फ्री सॉफ्ट ड्रिंक्स भी दिए जाएंगे। इसके अलावा फ्री फूड बाय शिवानी रेस्टोरेंट और इडली सांभर। और इसके साथ साथ में अगर जो आप शॉपिंग करने के मूड में हैं तो यहाँ पर ज्वेलरी, क्लोथिंग और ढेर सारे ऐसे स्टॉल्स रहेंगे। इसके साथ में बच्चों के लिए फेस पेंटिंग और बाउंसी कासल, ये सभी कुछ यहाँ पर रहेगा। और जानकारी के लिए आप शिवानी को 02187-0012 पर और शांति रवि को 02129463 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ में 4:30 PM पर 147th गिरमिट रिमेम्बरेंस डे ये मार्क किया जाएगा आज मलेओला कम्युनिटी सेंटर 16 वाकोरी प्लेस मेंगरी ओकलैंड में। अगर जो आप सोच रहे हैं कि आप क्या करें तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, क्योंकि एक ऐसा ऐतिहासिक हिस्टोरिक डे हमारे लिए फिजी वासियों के लिए यहाँ पर मार्क किया जा रहा है। ढेर सारे परफॉर्मेंसेस रहेंगे, स्पीचेस रहेंगे, साथ में यहाँ पर हम के क्रिश भी रहेंगे आपके लिए, ये होस्ट करेंगे इस फंक्शन को। और यहाँ पर आप जा सकते हैं फ्रॉम 4:30 PM ऑनवर्ड्स और 16 वाकोरी प्लेस मेंगरी ओकलैंड में। ये सभी कुछ समाचारों में नहीं, बिल्कुल कम्युनिटी न्यूज़ में आप तक हम ला रहे हैं। ये है रेडियो पब अभी के साथ है।

आप सुन रहे रेडियो पब, और इस पर ध्यान दीजिएगा, जो हम दूसरों को देंगे वही बदले में लौटकर हमारे पास आएगा, चाहे वो इज्जत हो, सम्मान हो या फिर धोखा।

0: Radio Pub. You're listening to Avineet.
1: स्टूडियोज में हमारे घड़ी के अनुसार इज जस्ट आफ्टर फोर और मैं हूं अभी आपके साथ में, जबकि ये जो सेगमेंट हमारा रहता है, ये जो शो रेडियो पब रहता है, अक्सर स्पोर्ट्स की दुनिया से हम आपके लिए नवीनतम जानकारियां लेकर आते हैं। इट्स अ स्पोर्ट्स बेस्ड शो, तो आपके साथ में इस आवर पर भी कुछ गेम्स, साथ में अपकमिंग मैचेस के बारे में और साथ में जो रिजल्ट हमारे हाथ में इसके बारे में भी बात करेंगे। बस थोड़ी ही देर में साथ देते रहिएगा। कीप हमिंग विद अवी।

मैं हूं अभी आपके साथ में और ये है हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स और आप सुन रहे हैं रेडियो पब। और जैसे कि हमने कहा था आपसे कि स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानकारियां आप तक लेकर आएंगे, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड साथ में नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच में कल रात 11:30 पर एक मैच होने जा रही है। यूं कहें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए इट्स अ डेड रबा मैच, क्योंकि डेड रबा का मतलब है कि ये कोई मायने अब इनके लिए नहीं रखता, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द चैंपियंस लीग। और अगर जो एक ही मोटिव हो सकता है कि इफ दे वांट टू मेंटेन देयर थर्ड पोजीशन ऑन द टेबल, लेकिन एक और एक जानकारी जो है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए उनके फैंस के लिए काफी जरूरी है कि माइकल कैरिक के साथ में जो उनके अभी इंटरिम मैनेजर थे, इनके साथ में जो एग्जीक्यूटिव्स की बातें हो रही है कि इनको शायद अगले सीजन तक या फिर द सीजन आफ्टर तक इनको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करना चाहते हैं। तो ये जो कुछ बातें हैं इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, एक्सपर्ट्स की माने या अगर जो स्पोर्ट्स की दुनिया के लेकर जर्नलिस्ट की माने, तो इनका कहना है कि शायद ये अनाउंसमेंट कन्फर्म किया जाएगा जस्ट बिफोर दिस मैच कि माइकल कैरिक को अगले दो सालों तक जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर जो पोजीशन है इस पर कन्फर्म किया जाएगा। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच।

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा
4: है।
5: 6 to 10 a.m.
6: Forget counting sheep. Count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric Blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
7: गाड़ी चलती रहे, टेंशन

0: Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ बोली बस मेरा फोकस है हाँ।
2: अच्छा
1: बताओ तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं
2: मिसेस सिंह
3: अरे पम्मी जी मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने
4: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन्स फोकस किचन्स यूनिट के 33 वॉन्सली रोड ओटाहू कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz
5: Don't put up with a damp, cold bathroom this winter. With a Shower Dome shower top, your bathroom will be warmer, drier, healthier. And now every Shower Dome comes with a lifetime guarantee. That'll give you the warm fuzzies. Showerdome.co.nz.
6: A proud member of New Zealand's Master Builder, building high-quality standalone and terraced houses. We're one of the award-winning teams for House of the Year, one of the most trusted and experienced subdivisions and building specialists. We manage from subdivision until the end of CCC. Our customers always recommend us to their closest friends. Call us on 0800-233-111.
7: Indelible Homes, your building expert.
8: साउथ इंडियन टेस्ट का क्रेविंग है ट्राई करो कशिश फूड्स डोसा बैटर फ्रेशली मेड इन न्यूजीलैंड स्टोन ग्राउंड फॉर दैट ऑथेंटिक टेक्सचर सॉफ्ट फ्लफी इडलीज और परफेक्टली क्रिस्पी डोसास हर बार क्लासिक हो या रागी मल्टीग्रेन या मेदू वड़ा बैटर सब मिलेगा और हाँ बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री लिमिटेड टाइम ऑफर 31 मई तक कशिश फूड्स ईट बेटर लिव बेटर

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और अक्सर आपको बताते रहते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है या फिर क्या कुछ होने वाला है। तो मार्क द डेट, अगर जो आपको एंटरटेनमेंट की तलाश है तो 23rd ऑफ मई इज एन इम्पोर्टेंट डेट आपके लिए, जबकि नेटबॉल कोर्स मनीरवा में वाइब मिक्स इवेंट लेकर आ रहे हैं द ग्रैंड मस्ती नाइट। यहाँ पर फिजी के रिनाउंड आरजेस परफॉर्म करने वाले हैं। इसके साथ में ढेर सारे और ऐसे आर्टिस्ट है जो आपके एंटरटेनमेंट का पूरा ख्याल रखेंगे। यहाँ पर चरफर आफ्टर लॉन्ग 17 ईयर्स परफॉर्म करने वाले हैं। इसके साथ में ड्यूअल वॉइस के मालिक मनी डिसूजा रहेंगे एंड दे आर मेनी मेनी मोर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट। और अगर जो आपको टिकट्स चाहिए तो आपको सिर्फ हंटर्स फूड टाउन पपटोई, साथ में जेस फ्रेश मार्ट पपटोई, गेट फ्रेश सुपरमार्केट मैंगरी और साथ में कैसे एंड ब्यूटी सलून मनीरेवा के साथ में विकेट चिकन बोटनी डाउन्स ब्रांच से और साथ में जेंडा हेयर एंड ब्यूटी सलून कैवेंडिश ड्राइव, यहां से आप अपने जो टिकट्स है ले सकते हैं बिफोर दे बिकम सोल्ड आउट। तो यहां पर जो आरजेस के बारे में हम बात कर रहे थे ना, ये है एस एन जय और साथ में नमन।

यह है रेडियो पाबावी के साथ में, और जीवन की एक सच्चाई यानी कि ट्रूथ ऑफ लाइफ एक ये है कि जिंदगी में आप कितने खुश हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन ऑन द अदर हैंड एक बात ये भी है कि आपके कारण और कितने लोग खुश हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशंस, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: द हच विल्को न्यू जीलैंड बोट शो इज बैक। सी द लेटेस्ट बोट्स एंड फिशिंग गियर, बी इन टू विन अ मैसिव सर्टीज यामाहा ग्रैंड प्राइज, ऑन नाउ एट ऑकलैंड शोग्राउंड्स। टिकट्स एट boatshow.co.nz.
2: Big news, New Zealand. Mother's Day may be over, but our Triple Dip promotion is still on. There's 100 extra prizes of $30,000 that must be won. Get a Triple Dip in-store or online. Prizes drawn Saturday 16th of May. T's and C's apply.
3: Danny didn't think he needed a DVS system.
4: Our whole house was damp, so I got a dehumidifier to sort it.
3: But it didn't sort the whole house, did it, Danny?
4: Nah, only one room. It was just too noisy.
3: So Danny got DVS home ventilation, and its fresh air in, stale air out technology went to work, making his whole home drier and condensation free. Say yes to DVS. Your healthy home isn't complete without it.

0: Yo.
1: Radio Pub.
2: आप सुन रहे रेडियो पब अभी के साथ में, और आपको जल्द से याद दिला दे 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, ये आज पूरे पैमाने पर जारी है। आपको सिर्फ जाना होगा मलियोला कम्युनिटी सेंटर, 16 वाकोरी प्लेस, मेंगरी, ओकलैंड में, जहां पर 4:30 PM से ये जो इवेंट है शुरू हो चुकी है, लेकिन ये चलती रहेगी 8:30 बजे रात तक। तो अभी भी आपके पास में समय है, आप यहां पर जाकर जो आज का इवेंट है 147 गिरमिट रिमेम्बरेंस डे, जहां पर हम अपने ऐतिहासिक एक दिवस को याद कर रहे हैं, और इसमें ऐसे में आप इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां पर ढेर सारे परफॉर्मेंसेस रहेंगे और ढेर सारे गिव अवे प्राइजेस, स्पीचेस, ये सभी कुछ रहेंगे। सीनियर्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनके कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो इन सभी के लिए आपको सिर्फ जाना है मलियोला कम्युनिटी सेंटर, जो सिचुएटेड है 16 वाकोरी प्लेस, मेंगरी, ओकलैंड में।

हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और 104.2 FM साथ में रोवा पर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है। आपको बता दें कि वीकडेज में अगर जो आप ब्रेकफास्ट सेगमेंट सुबह सुबह मिस कर देते हैं तो घबराने की कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ BF टेक्स्ट करना होगा 5599 पर और यहाँ पर जो लेटेस्ट पॉडकास्ट है आप इसे कैचअप कर सकते हैं। जबकि अक्सर विजय और पूजा कुछ ऐसे ऐसे बातों को लेकर आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी से, हमारी कम्युनिटी से बिल्कुल जुड़ी रहती है। और इसके साथ में अगर जो आप ड्राइव शो को मिस कर देते हैं तो सिंडी और उज़्बे भी काफ़ी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आते हैं जहाँ पर वो हमारे यूँ कहें हमको लेकर, हमारे इंडिविजुअल प्रोग्रेस को लेकर अक्सर ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स को लेकर आते हैं शो पर, ताकि हमको टिप्स और हिंट्स मिल सके और हम अपने लाइफ को बेटर बना सकें। तो ड्राइव लिखकर 5599 पर आप जब भी भेजेंगे आपको अनफिल्टर्ड का भी लिंक मिलेगा जिसे आप अपने कन्वीनियंस पर कहीं भी किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: रेडियो पब।
1: हम पर मैं हूँ अभी आपके साथ में और कुछ ऐसी ऐसी बातों को भी लेकर आते हैं जो आपको सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर दे। इस बार बातें करते हैं चेंजेस को लेकर, यानी कि बदलाव को लेकर। हम इंडिविजुअली अपने लाइफ में ऐसे कहे तो चेंजेस को लेकर कितने फ्लेक्सिबल है, यानी कि कितने ईजिली इसको एम्ब्रेस कर लेते हैं। शायद कुछ लोग ऐसे भी होते हैं आउट देयर जो चेंज को सुनकर या बदलाव को लेकर काफ़ी उनको चैलेंज भी करते हैं, पुशबैक भी करते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो चेंज को बिल्कुल ईजिली एम्ब्रेस कर लेते हैं। तो मेरा ये इंडिविजुअल, यानी कि मेरा ये व्यक्तिगत विचार है जो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बहुत पहले किसी ने मुझसे कहा था कि अगर जो आप अच्छी तरीके से लाइफ को देखें तो चेंज यानी कि बदलाव इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, यानी कि एक ऐसा ही फैक्टर है जो ऑल थ्रू आउट हमारे लाइफ में प्रेजेंट रहती है, वो है चेंज। यानी कि किसी न किसी मोड़ पर, किसी न किसी चीज़ को लेकर, मुद्दे को लेकर, अपनी चॉइसेस को लेकर हमें बदलाव करनी ही करनी पड़ती है। तो क्यों इसे ना स्वीकार करें।

हम पर मैं हुआ भी आपके साथ में। जो हमारे प्यारे प्यारे लिसनर्स हैं जो पुरानी यादों में खोना पसंद करते हैं, तो आपके लिए इसका पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है हमारे हम म्यूजिक स्टेशंस पर। जी हां, आपके लिए हम रिवाइंड है, जहां पर 60s और 70s के सुनहरे गाने आपके लिए रखे गए हैं। साथ में हम 80s जुकबॉक्स, यहां पर 80s के जो गाने हैं ये भी आपके लिए सजा कर रखे गए हैं। और जितने भी भजनिक है, आप भजनों को सुनना पसंद करते हैं, खासकर फिजी भजन, इसका भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया है। और एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 24/7 फ्री फिजी का भजन सुन सकते हैं कहीं भी किसी भी वक्त। इसके साथ में चढ़ती कला, जितने भी पंजाबी हिट्स है, पंपिंग नंबर्स आप सुनना चाहते हैं तो पंजाबी हिट्स को आप सुन सकते हैं चढ़ती कला में। और इसके साथ में फिजी कीर्तन संग्रह, और यहां पर फिजी के जो ऐसे ऐसे कीर्तन आर्टिस्ट है जो बहुत ही सुरीले और काफ़ी मशहूर है, इनके कीर्तन को भी रखा गया है। तो आपको सिर्फ जाना होगा फिजी कीर्तन संग्रह पर और आप कहीं पर भी फिजी कीर्तन को सुन सकते हैं। इसके साथ में राहत फ़तेह अली खान का अपना अलग अंदाज है और इनके भी काफ़ी फॉलोअर्स हैं, लिसनर्स हैं, तो आपके लिए राहत फ़तेह अली खान का भी जो सूफी और कवाली नंबर्स है ये भी स्टोर किया गया है हम म्यूजिक स्टेशंस पर, जहां पर आपको सिर्फ रोवा ऐप पर जाकर ये सभी कुछ बस सुनना है, जस्ट विद अ टच ऑफ अ बटन।

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता,

0: सिर्फ रोवा पर।
1: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. On now at Auckland Showgrounds. Tickets at boatshow.co.nz.
2: With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis, with you, for you.
3: Bollywood ke sabse bade hit gaane.
4: Kabhi bhi, kahin bhi.
5: Radio Pub. 104.2 FM साथ में रोवा पर आप सुन रहे हैं मुझे, मैं हूं अभी आपके साथ में बस कुछ ही देर तक, और हमारा और आपका साथ बना रहेगा। ये है रेडियो पब, अभी का साथ है।

0: रेडियो पब।
1: आज के लिए हमारा और आपका साथ बस यहीं तक था। आपने 12 बजे से हमको सुना और हम पर हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यही वादा किए जा रहे हैं एक बार फिर हमारी और आपकी मुलाकात कल होगी 12 पर, लेकर आएंगे आपके लिए जस्ट चिल, इसका भी आप इंतज़ार करिएगा। लेकिन आज के लिए आप बिल्कुल खुश रहिए और उनमें भी खुशियाँ बांटते रहिएगा, ताकि आप मुस्कुराते रहिए और आपको देख कर और भी लोग मुस्कुराना सीख जाए। ये सभी कुछ आपके साथ में बातें रहती हैं अक्सर, लेकिन आज के लिए अलविदा लेते हैं आपसे और यही चाहेंगे कि आप खुश रहे। टेक केयर, औरों का भी ख्याल रखिएगा। बाय।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फिजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फिजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने।
1: वेलकम टू कबाब्स किचन, आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा।
2: बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
1: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स। हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन।
2: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग। स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी।
1: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट। अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स।
2: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव।
3: व्हाई टू अ फ्री रेंज चिकन full of natural goodness and deliciousness for that cozy family night feeling. All the feels for all the meals.
4: The Hutch Wilco New Zealand Boat Show is back. See the latest boats and fishing gear. Be in to win a massive Surtees Yamaha Grand Prize. On now at Auckland Showgrounds. Tickets at boatshow.co.nz. You gotta come.

उस पे, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: breakfast show with Vijay and Pooja.
1: पूरी planning से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
2: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with Vijay and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels every win, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.

0: मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना मैं?
1: तो क्यों अच्छा लगेगा?
0: तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी?
1: मैं तुझे देख नहीं रही थी, इसलिए तू कौरा बौरा हो रहा था ना।

0: जेट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: From a change in geopolitics, to changes in the weather, to changes in the All Blacks, change is constant. And so is the news on this station. Your source for everything changing, in association with RNZ News. Change is in the air.
2: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। oaklandcouncil.govt.nz/whereitgoes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland.
0: फ्यूल के दाम रोज बढ़ रहे हैं और स्मार्ट ड्राइवर्स अब स्विच कर रहे हैं। फ्यूचर है एफिशिएंट ड्राइविंग का और वेसिटी ओमोडा जेको के साथ ये शिफ्ट और भी इजी हो जाता है। इंट्रोड्यूसिंग द पावरफुल J7 सुपर हाइब्रिड सिस्टम, परफॉर्मेंस भी, एफिशिएंसी भी और ऑल इलेक्ट्रिक J5 EV, जीरो इमिशंस, मैक्सिमम सेविंग्स। आज ही वेसिटी ऑटो ग्रुप पहुंचे और जिमी टेलर और उनके एक्सपर्ट टीम से मिले। फॉर मोर इन्फो विजिट vesityautogroup.nz और सर्च फॉर वेसिटी ऑटो ग्रुप ऑन सोशल।
3: Party up, no, no, no, no, no.
4: This is DJ Mix.

0: using me. Power through Miss with Morning Fresh.
1: Reliance Ventilation System.
2: Hi, मेरे घर में बहुत problems हो रही है, जैसे कि crying windows, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है.
1: Moisture और ventilation का problem लगता है.
2: और पता है, मेरे बच्चों को asthma और allergy भी हो गई है.
1: Oh, that's not good. हम आपके सभी problems Reliance Ventilation System से solve कर सकते हैं. इससे आपका घर रहेगा warm in winter and cool in summer. और हम Mitsubishi Electric और Toshiba Heat Pumps के authorized dealers भी हैं.
3: Contact Reliance Ventilation System on 0800 787 111. Reliance Ventilation Systems, solving ventilation problems for over 18 years.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: Rewind, सिर्फ रोवा पर। Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
1: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours.

हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म।

0: DJ Raw King. Party up, no, no, no, no, no.
1: This is DJ Mix.

कबड्डी कबड्डी कबड्डी।

दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फिजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फिजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहें तब अपने फेवरेट कीर्तन का

0: Smart Totoy plus 24-hour mobile service. For bulk orders, call Ron on 022-175-3941 or visit rpstires.co.nz or their Facebook page. RPS Tires. Drive safe, drive smart.
1: सोना संसार पापा टोटो के गहनों के साथ आप भी चमक जाएंगे।
2: चूड़ी, कंगन, पायल, बाली, झुमके और चोकर, ये सोना वही सोना संसार है जहां दिल्ली से लेकर दुबई तक के सभी गोल्ड ज्वेलरी डिजाइन्स मिलते हैं, समझे?
1: सोना संसार पापा टोटो, जहां था वहां अभी भी है। शॉप इनसाइड विद आजा डिजाइन स्टूडियो, कॉर्नर ऑफ ग्रेट साउथ रोड एंड ईस्ट तमाकी लाइट्स, पापा टोटो।
3: सोना संसार, 138 ग्रेट साउथ रोड, पापा टोटो। सोना संसार, यू आर नेवर टू ओल्ड फॉर गोल्ड।
4: Night Flight

0: Flight on Hum.
1: Driving you home.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby.
3: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
4: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
5: वो भी आई लव यू वाला.
4: मैडम ने पकड़ लिया भी यहाँ भी किसने बनाया. वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा.
5: अच्छा आप दिलजीत तो
4: आए आए बताओगे यार.
2: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaku.

भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: breakfast show with VJ and Pooja.
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, 100% तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
3: कर रहा हूँ? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ में नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: The Breakfast Show with VJ and Pooja,
4: brought to you by Fortune, with whole grains and essential vitamins. Fortune fuels everyone, big or small. Bring home the fortune.
0: Weekdays 6 to 10 a.m.
5: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
6: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
5: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-4626-26 today.
6: Available at selected branches. T's and C's apply.
7: Adore your floor for less with Flooring Extra's Walk Into Winter Sale on now. Here's your chance to get beautiful floors and unbeatable value on their range of best-selling carpet and hard flooring. And to make it even easier, ask about their 16 months no payments and no interest offer with QCard. So find the flooring that suits your style and your budget at your local Flooring Extra showroom with trusted advice every step of the way. TC's, fees and credit criteria apply.
8: Flooring Extra. Adore your floor.
9: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
10: हाँ। अच्छा
9: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
10: मिसेस सिंह
11: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन, जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन ने।
12: मॉडर्न क्लासिक शेक स्टाइल किचन, फोकस किचन, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 0928130050 और विजिट focuskitchens.co.in. Zed.

0: अपने जैक बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडियावर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी। बसेस, बिलबोर्ड्स, ट्रेन स्टेशन, स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी काशिका ऑन 021-769-755. मीडियावर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।
1: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Night Flight.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: Night flight on hum.
2: मंथ इज एनजेड म्यूजिक मंथ। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, ये है इमोशन, पैशन और थोड़ा सा देसी स्वैग। प्रेजेंटिंग बैक योर बैकयार्ड बीट्स, जहां हर गली हर कॉर्नर से निकलता है एक नया सुपरस्टार। आज का लोकल आर्टिस्ट कल का ग्लोबल सेंसेशन, तो क्यों ना आज से ही उनका साथ दे। ट्यून इन करो और अपने बैकयार्ड बीट्स को दो फुल सपोर्ट। बैक योर बैकयार्ड बीट्स ब्रॉट टू यू बाय PFSL, प्रोवाइडिंग द बेस्ट होम लोन एडवाइस फॉर द लास्ट 20 years। गूगल PFSL टुडे एंड Amma's food, 100% authentic and pure as mother's love.
3: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
4: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
3: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800 46 26 26 today.
4: Available at selected branches. T's and C's apply.

0: नॉनस्टॉप बॉलीवुड
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं
0: हम प्लेइंग बॉलीवुड्स बिगेस्ट हिट्स
2: लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस

0: ये हाथत बॉम्ब सोड़ा अड़वे रॉकेट गए फुल जड़ी से तूने भरे ले पॉकेट अरे बार अब बन मेरे जाई सबन ये ले नाना का बॉम्ब जाके उड़ा दे घर
1: Bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. Oh bhai phu, phugadi phu, you like me and I like you too. You like

0: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
1: तैयार हो जाओ एक सूफी रात के लिए। Once upon a time with the legendary Rahat Fateh Ali Khan live in concert along with Shahzaman Ali Khan Saturday 25th July at the Trust Arena. Book your tickets on drytickets.co.nz. For sponsorships, call Karam Hundal on 027-514-6477.

0: Punjabi swag is on.
1: Hey, hey.

शाम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, बिल्कुल स्पष्ट है इसका अर्थ। और गहराई में जाएं और ध्यान दें तो एक नया अर्थ सामने आता है। रंग भी शाम है और पिया भी शाम है, तो शाम रंग में पिया मोरी रम दे चुनरिया। शब्दों की ओर ध्यान दें।

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Discover the magic at Go Bananas Childcare, जहां आपके बच्चे सीखेंगे in a fun way. With 19 branches across Auckland and Waikato, हम हमेशा आपके पास हैं.
2: Go Bananas Childcare is now offering 30 hours for just $10 per week for all ages.
1: तो जल्दी join करें to enjoy these special offers. और सबसे खास बात, Go Bananas Childcare Beachlands is now open and offering 12 months completely free for a limited time. तो देर मत कीजिए. Call 0800-46-26-26 today.
2: Available at selected branches. T's and C's apply.
3: वो इनडेलिबल होम्स वाली कहानी सुनाओ ना।
4: The story begins in 2007. Claude has a vision for a building company. It aims to become an expert in providing affordable homes with modern designs. With a 10-year master builder guarantee, awards pour in.
5: Award goes to Indelible Homes.
4: Trust of the customers builds. Indelible Homes becomes New Zealand's favorite master builder.
0: कहानी of Indelible Homes.

आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आरजू के साथ. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी के लिए. आई होप आपकी सुबह बहुत अच्छी जा रही है एंड ऑल्सो योर वीक. लेट मी नो आपकी हालत क्या है हफ्ते का. लेट मी नो 5599 पर. माई वीक वॉज हेक्टिक.

आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. आज बहुत एक्साइटिंग इवेंट होने जा रहा है ऑकलैंड में. इसका नाम है भोजन मेला, फूड कार्निवल. दैट्स हैपनिंग टुडे फ्रॉम 11 AM से 4 PM शाम तक. और ये लोकेशन है 378 आरारीमू रोड, रामारामा, साउथ ऑकलैंड में. और ये इवेंट की पर्पस है कि टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरा'स टेम्पल प्रोजेक्ट जो ऑकलैंड में हो रहा है. इट्स लाइक अ वेरी लाइक ब्लेस्ड डे आज, क्योंकि you know, the community is coming together for blessings and also to have fun. Kyunki ye mela mein, it's free entry, free khana bhi, free food from Shivani restaurant or Idli Sambar. Uske upar free soft drinks bhi mil raha hai aapko. And aapko shopping karni hai, then there's jewelry, clothing and a lot of exciting stalls available aaj carnival mein. And also aapko mehndi lagani hai, then there's henna artists available as well. And bachche ke liye as well, there's some bouncy castles, uske upar face painting bhi. So sab ke liye kuch hai. It's happening today from 11 AM to 4 PM at 378 Arrarimu Road in Ramarama, South Auckland.

सैंडी एंड रिस्पी, क्योंकि दुनिया में ऑलरेडी बहुत सारे परफेक्ट पॉलिश्ड इंस्टाग्राम फ्रेंडली स्टोरीज हैं और उनका हमसे कोई लेना देना नहीं।

0: anywhere you get your podcast.
1: Big Points Blitz is on now. Get up to $30 worth of everyday rewards vouchers when you shop at Woolworths or Fresh Choice. Boost the offer in your everyday rewards app, shop in store or online and collect big bonus points. Hurry, Big Points Blitz offer ends 24th of May. T's and C's apply.
2: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric blankets, 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
3: I'm Sophie, and my partner recently injured his shoulder playing basketball. But he saw a physio, and she gave him a clear plan. She showed him exercises that were right for him, and how to use things around the house instead of weights. And it worked! He recovered in time for the birth of our twins, and he was able to hold them in each arm. It was pretty special.
4: If you've got an injury like a sprain or strain, staying active during your recovery can help you get back to what matters sooner. Find out more at acc.co.nz/recover sooner.
0: Chill, sip, smile.
5: This is Sunday Breakfast.
6: Aap sun rahe hain 104.2 FM aur main hoon Arzav ke saath. If aap bhi mere jaise Rohit Saraf ki fan ho, then it's exciting news kyunki unke dusra project announce kiya gaya hai. The new movie that he's going to be a part of is called Mahakali, and this is the second next chapter, I guess, from the world of Hanuman ya fir Hanuman, is that how you pronounce it? Sorry, मुझे ये मूवी के बारे बिल्कुल भी पता नहीं है. आप प्लीज़ मुझे 5599 में प्लीज़ मैसेज कीजिए. आई एम गेसिंग इट्स हनुमान क्योंकि ये डैश है, सो आई एम वेरी कन्फ्यूज. बट बेसिकली ये मूवी 2000 कब रिलीज़ हुआ था, 2024 में रिलीज़ हुआ था. 2024 एक तेलुगु लैंग्वेज वाला सुपर हीरो वाली मूवी, जो ऑब्वियसली मैंने नहीं देखी क्योंकि आई डिडंट इवन नो अबाउट इट. बट इसकी जो नेक्स्ट चैप्टर बनाने वाले हैं, जिसका नाम है महाकाली, उस फिल्म में रोहित सराफ विल बी टेकिंग पार्ट. उसमें ही इज़ गोना बी वन ऑफ द लीड एक्टर्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एज अ रोहित सराफ फैन. आई एम गोना वॉच एनी ऑफ हिज प्रोजेक्ट्स, यू नो. और ये मूवी में देर इज़ ऑल्सो गोना बी स्टार्स लाइक अक्षय खन्ना और भूमि शेट्टी भी इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स. सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट. आपने ये हनुमान या हनुमान मूवी देखी है, देन लेट मी नो 5599 में आपको कैसा लगा.

0: driving you home.
1: The Drive Show with Sandy and Rusby.
2: तो फिर सरिता के चप्पल का साइज क्या था?
3: तो उसने सरिता ने जाके मैडम को बोल दिया कि हाँ जी मेरे को जहाज मारा किसी ने,
4: वो भी आई लव यू वाला।
3: मैडम ने पकड़ लिया भी, हाँ किसी ने बनाया, वो एक लड़की थी, वो बोलती जहाज तो दिलजीत बना रहा था बेटा।
4: अच्छा आप दिलजीत हो?
3: आए आए बताओगे यार।
1: The Drive Show with Sandy and Rusby, brought to you by Beds R Us Manukau and Pukekohe, with Sleepyhead Queen Mattress Range starting from 449, and Jimmy Taylor and team from West City Auto Group, the home of GWM Havel and Omura Jaiku.
5: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric Blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.

आप सुन रहे हैं हम ऑन 4.2 एफएम और मैं हूं अर्जब के साथ. 2005 की मूवी जो है नो एंट्री वाज सच अ पॉपुलर मूवी बिकॉज़ आई रिमेंबर फ्रॉम माय वेक मेमोरी व्हेन आई वाज यंग बहुत पॉपुलर था वो मूवी. और अब नो एंट्री की सीक्वल जो है नो एंट्री 2 वाज इन द वर्क्स एंड ये मूवी के लिए दे हैड कास्टेड ओरिजिनली वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और ऑल्सो अर्जुन कपूर, जिसमें अब ओनली अर्जुन कपूर लेफ्ट है क्योंकि वरुण धवन एंड दिलजीत दोसांझ बोथ हैव नाउ एग्जिटेड द प्रोजेक्ट एंड नाउ ड्यू टू दैट वो फिल्म होल्ड में है. एंड आई जस्ट आस्क्ड यू गाइस अर्लियर कि आपको क्या लगता है कि ये मूवी में हु शुड बी नाउ एक्टिंग, हु शुड दे कास्ट नेक्स्ट. एंड देन टेक्स्ट में आई सी अ लॉट ऑफ सलमान खान, अनिल कपूर, फरदीन खान एंड सेइंग कि उन लोगों को रिटर्न, लाइक ब्रिंग देम बैक इन द मूवी. I agree. Bring the original cast because, you know, it's always irreplaceable. Dusra message mein I've seen Shahid Kapoor bhi. And then I also see Kartik Aryan. I guess he's one of the new generation guys. And someone's also said ki Ayushman Khurrana as well. That's actually not a bad shout. I agree with these options. Yeah, bring back the original. Yeah, fair. These new guys are all good too. But yeah, it's a shame ki Diljit or Varun Dhawan both left because that would have been such a great cast, you know, ye no entry do ke liye. But, you know, things happen. Life doesn't go the way you want. But it's all right. Hopefully, the movie doesn't, like, permanently stop or we can still, you know, hope to see the sequel in the movie soon.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. वेरी गुड मॉर्निंग. बाय द वे, इफ आप गाड़ी में हो देन यू कैन ऑलवेज टेक अस विथ यू हमारी रोवा ऐप में, ROVA. वहाँ से आप जब भी कहीं पे भी सुन सकते हो.

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हो? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: हाँ। अच्छा
0: बताओ, तुम्हारा फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह,
2: अरे पम्मी जी, मेरा फोकस मींस मेरे घर का किचन जिसको डिजाइन किया है फोकस किचन्स ने।
3: मॉडर्न क्लासिक शेकर स्टाइल किचन्स, फोकस किचन्स, यूनिट के 33 वॉन्सली रोड, ओटाहू। कॉल 09281 3050 और विजिट focuskitchens.co.nz।
4: रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम।
5: हाय, मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे कि क्राइंग विंडोज, सीलन आ गई है और खाने की बदबू तो जाती ही नहीं है।
4: मॉइस्चर और वेंटिलेशन का प्रॉब्लम लगता है।
5: और पता है, मेरे बच्चों को एस्मा और एलर्जी भी हो गई है।
4: और दैट्स नॉट गुड। हम आपके सभी प्रॉब्लम्स रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम से सॉल्व कर सकते हैं। इससे आपका घर रहेगा वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। और हम मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक और तोशिबा हीट पंप्स के ऑथराइज्ड डीलर्स भी हैं।
6: कॉन्टैक्ट रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम ऑन 0800-787-111। रिलायंस वेंटिलेशन सिस्टम्स, सॉल्विंग वेंटिलेशन प्रॉब्लम्स फॉर ओवर 18 years.
7: At Bunnings, you can keep the cold air out for less with an Adored Fabric Draft Stopper, just $10.95. It doesn't cost a lot to winterproof your home. Shop online or in-store. Bunnings Warehouse. Lowest prices are just the beginning.
8: Get a $100 digital Visa card with AMI. Buy a new comprehensive car policy online before the end of September. Visit ami.co.nz. T's and C's apply. AMI. On your side.
9: Breakfast show with Vijay and Pooja.
10: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएं।
5: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब क्या मैसेज
11: कर रहा है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन।
5: मेरे को समझ में नहीं, एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने।
11: अरे किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।

0: to 10 a.m. Zabardast hits.
1: Shuru ho jaye to rukte nahi.
0: Playing Bollywood's biggest hits.
2: Hum.
3: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ अर्ज आपके साथ. हमारी अनफिल्टर्ड टीम जो है सैंडी और रुजबे, दे हैव ओपन्ड अ फेसबुक ग्रुप पेज जहाँ पे दे कैन कनेक्ट विथ यू डायरेक्टली. फेसबुक पेज ग्रुप का नाम है अनफिल्टर्ड क्रू, UNFILTERED CREW. और उसके बाद आप वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए एंड देन यू कैन हैव एन ईजी कम्युनिकेशन. वो बहुत एक्टिव है फेसबुक में, सो यू कैन ऑल्सो पोस्ट एंड दे विल रिप्लाई, या फिर आप भी उन लोगों के पोस्ट में कॉमेंट कर सकते हो एंड यू नो Yeah, connect. We love connection here. And we love to like be in, you know, connection with you guys, hamari community. And aapko un logo ki podcast miss out hua hai and you want to listen to it, then text 5599 mein drive and I'll flick you the full episode.

0: Bollywood.
1: जो भी करते शिद्दत के साथ करते हैं.
0: हम playing Bollywood's biggest hits.
2: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. हमारी रोवा के ऐप में आप गेम खेल सकते हो. आई एम श्योर यू नोन अबाउट इट, बट दिस इज जस्ट अ लिटिल रिमाइंडर कि आप आज $100 जीत सकते हो जस्ट बाय सिंपली प्लेइंग चर्टल ऑन रोवा. सो आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप प्ले स्टोर या फिर गूगल प्ले में. नो वेट, प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में. नाम है चर्टल, CHURDLE. And basically, aapko wo game mein, you have to guess a Kiwi word, very New Zealand saying ya fir phrase. And once you've cracked it, aapko answer mil gaya, then you are into the draw to win $100. And we are giving out $100 every day. So aap, yeah, easy money. And the more you play, the better are your odds. So, din mein aap ek hi baar khel sakte ho, but don't worry ki aapne aaj nahi jeeta, kal aapka chance still hai. So, make sure aap hamari app ROVA mein khelo. Oh my god, aap ROVA mein kheloge? No, that's not the way you say it. Aap ROVA Rova mein jaakar kheliye. Oh my god, let me know 559 par. Ya fir aap rova.nz mein bhi jaakar khel sakte ho. But yeah, easy money.

चाहे आप हम के दिन चैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माय एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशंस स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव कॉट द स्पॉटलाइट फॉर योर ब्रांड। कॉल मी कशिका ऑन 021-769-755। मीडिया वर्क्स, मीडिया दैट वर्क्स।

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. एंड इट इज ट्रू कि सैफ अली खान और शाहरुख खान आर नाउ वर्किंग आफ्टर टू डेकेड्स. जी हाँ, आफ्टर टू, ओह माय गॉड, दैट वाज वेरी सीरियस. जी हाँ, दो डेकेड्स के बाद सैफ अली खान और शाहरुख खान की रीयूनियन होने जा रहा है थ्रू अ फिल्म प्रोजेक्ट. हाउएवर they're not going to be acting in the film together. क्योंकि ये फिल्म में it's just Saif Ali Khan who's acting. Shahrukh Khan is just a producer in this movie. So, but then it's still cool कि ये दोनों legendary actors are coming together in a film after two decades. And also, there's some exclusive news कि मेहू नाम है, Saif Ali Khan was almost a part of it. Yep, I'll let you know more about it next up.

आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. One of the biggest, I guess, stadium at the moment. I think it's bigger than Eden Park. It is now open in, obviously, it's already open, but One NZ Stadium, Christchurch में. So, ये stadium में recently rugby, super rugby हुआ था. वो क्या बोलते हैं उसको, सुपर राउंड मैच, जहाँ पे एवरी टीम गेट्स टू प्ले इन द वीकेंड, ओवर द वीकेंड. सो इन द स्टेडियम अभी तक किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया है, लाइक अ कॉन्सर्ट. एंड लास्ट नाइट 660 और सिंथनी हेडलाइंड वंस इन अ लाइफ टाइम कॉन्सर्ट, जिसमें इट वाज लाइक दिस मेजर लाइव म्यूजिक इवेंट एंड हैविंग ओबियसली द बिगेस्ट कीवी बैंड. इट्स सो हिस्टोरिकल. एंड Honestly, ये stadium बहुत international class वाली है. Like, it looks so flash, बहुत fancy. It's indoor, आपकी like वो lights and everything. It looks so massive. I really want to go to Christchurch to attend at least a concert या फिर rugby match, क्योंकि बहुत बड़ा, like, it looks so cool. But yeah, congrats to 660 or Symphony, जिसने you know, they became like the first artists to perform at One NZ Stadium, and yeah, it looks so cool. Aap Christchurch ko ke ho, then let me know if you've been to that stadium yet. It looks unreal though.

0: एंड फिर मिसेस सिंह से मैंने पूछा, इतना अच्छा खाने के साथ किचन में रील्स और टिकटॉक कैसे बना लेती हूँ? बोली, बस मेरा फोकस है।
1: अच्छा
0: बताओ, तो फोकस फोकस साडा कुछ नहीं।
1: मिसेस सिंह।

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. हमारी हम फ्लाईवे फ्रेंजी से आप जीत सकते हो एक रिटर्न एयर टिकट टू फीजी, जहाँ पे आप एस्केप कर सकते हो यहाँ की विंटर. ऑब्वियसली विंटर इज कमिंग क्लोजर, इट्स गेटिंग कोल्डर. सो ऑल यू नीड इज द रोवा ऐप, ROVA ऐप, जो आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर में डाउनलोड कर सकते हो. एंड बेसिक क्या होगा इज वीक डेज में 8 AM, 11 AM, 1 PM और 5 PM में, ये 4 hours में यू विल बी हियरिंग अ कोड सिर्फ एक ही बार थ्रू आउट द 8 o'clock आवर, 11 AM, 1 PM और 5 PM, जहाँ पे आपको एक हम स्पेशल कोड मिलेगा एंड आपको यू नो 60 मिनट्स मिलेगा टू एंटर द कोड, द स्पेशल कोड ऑन रोवा टू बी पार्ट ऑफ द ड्रॉ. And one of you will be winning that, you know, escape to Fiji soon. So make sure ki aapke paas Rova ki app hai, ROVA, so you can enter that code and get in the draw. Kyunki free flights, I'm sorry, that is exciting. And I want to go to Fiji too. But unfortunately, meri contract ki wajah se, I can't, you know, apply for this. But you can. So aap... Why not? फ्री में आप जा सकते हो फिजी. सो मेक श्योर आपके पास रोवा की ऐप है.

0: breakfast on Hum.
1: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरज़ू आपके साथ. एंड लोग कह रहे हैं कि इस साल है 2026 के साल है द ईयर ऑफ द खान्स. एंड क्योंकि दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट ईयर सिंस 2018 सिंस ऑल द थ्री सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान हैव हैड देयर मूवीज रिलीज इन द सेम कैलेंडर ईयर. सो It is exciting. आप इन तीनों के ही fans हो तो. So I'll let you know more about all the movies and the release dates of these three actors. So stick around.

0: दिन जब मोहब्बत खतों में होती थी।
1: ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम नाराज

लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. इफ यू आर अ बिग फैन ऑफ NRL रग्बी देन यू नो कि इस वीकेंड राइट नाउ अभी की वीकेंड इज द मैजिक राउंड दैट हैपेंस एवरी ईयर, जहाँ पे ये वीकेंड में एवरी टीम प्लेज एट सनकॉर्प स्टेडियम ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया. और आज की गेम्स वी हैव टाइटन्स वर्सेस नाइट्स, उसके बाद वी हैव वॉरियर्स वर्सेस ब्रोंकोस, एंड देन वी हैव द लास्ट मैच बिटवीन पैंथर्स वर्सेस ड्रैगन्स. इफ यू गोना वॉच, लेट मी नो आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो. होपफुली इट्स वॉरियर्स, बट या लेट मी नो 5599 पर.

0: rock and roll. Download Rova to listen Hum 80s Jukebox.
1: Hum. With the Genesis app, LPG delivery feels easy. Switch to Genesis LPG Empower to get $15 credit per bottle delivered, plus 50 free power shout hours. Eligibility criteria and terms apply. Genesis. With you. For you.
2: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? Switch to Leap Motor C10 और B10 Ultra Hybrid और Electric. सिर्फ 44,990 plus on road से शुरू. Visit Armstrong's Leap Motor Green Lane or Botany. T's and C's apply.
3: जबरदस्त हिट्स.
4: शुरू हो जाए तो रुकते नहीं.
3: Playing Bollywood's biggest hits.
2: हम.
5: आप सुन रहे हैं हम संडे ब्रेकफास्ट शो विद आरजू और इस महीने मई इज द न्यूजीलैंड म्यूजिक मंथ. यहाँ पे वी आर ऑल्सो बैकिंग अ बैकयार्ड बीट्स एंड आई लेट यू नो अप नेक्स्ट हाउ यू कैन ऑल्सो सपोर्ट हमारी लोकल आर्टिस्ट हियर इन आउटियारोवा.

0: It's time to explore your own backyard. Hurry, sale ends midnight 18th May unless sold out. One way, excludes checked bags, travel dates and conditions apply. Book now at jetstar.com.
1: हम फिजी कीर्तन संग्रह की अपार सफलता के बाद भजन प्रेमियों के लिए पेश है हम फिजी भजन। प्रसिद्ध कलाकारों से फिजी भजन का मजा लीजिए कभी भी कहीं भी। हम फिजी भजन दुनिया का पहला 24/7 एक्सक्लूसिव एंड फ्री फिजी भजन प्लेटफॉर्म डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rova.nz पर सुने हम फिजी भजन।
2: The beat of Bollywood.
3: World's best हमारी कोई ब्रांच नहीं है।

आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आर सबके साथ. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और इफ यू डिडंट नो, हमारे पास आपके लिए रोवा में हम की ढेर सारे प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप सुन सकते हो 60s, 70s के हिट्स, जिसका नाम है हम रिवाइंड. उसके बाद दूसरा प्लेलिस्ट का नाम है हम 80s जुक बॉक्स, जहाँ पे आप नॉन स्टॉप 80s के गाने सुन सकते हो. उसके बाद वी हैव भजन्स भी, फीजी भजन्स. आप फीजी की बेस्ट आर्टिस्ट की भजन सुन सकते हो यहाँ पे. एंड इट्स ऑल्सो वर्ल्ड की फर्स्ट एवर 24/7 फ्री फीजी भजन की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. हमारे पास पंजाबी हिट्स भी है जहाँ पे आप नॉन स्टॉप बैक टू बैक पंजाबी हिट्स सुन सकते हो रोवा में, जिसका नाम है चढ़ती कला पंजाबी हिट्स. एंड वी ऑल्सो हैव राहत फतेह अली खान की प्ले लिस्ट, जहाँ पर आप सूफी कवाली सब सुन सकते हो बैक टू बैक. सब रोवा में है, ROVA.

0: Radio.
1: Streaming on Rover.
2: Capture the impossible with Spark and the new Samsung Galaxy S26 series with huge deals on now. Heading to Spark Arena? Put the latest nightography to the test and capture the best details of the night. Then with Photo Assist, easily say goodbye to the dancing photo bombers in the back. Buy from Spark for huge deals on the Galaxy S26 series now. T's and C's apply. Delivery times may vary.
3: Get more bang for your buck this weekend at Mitre 10. Score yourself a $20 gift card for every $100 you spend in-store or online. Auckland stores only. Conditions and exclusions apply. Offer ends Sunday 17th of May. Don't miss out. On now at Mitre 10.
4: कोई बेकार सामान है फेंकने के लिए, ई-वेस्ट हो या कोई अजीब चीज, तो उसे सीधा बिन में ना डालें। पता करें कि वो कहाँ जाना चाहिए। auckland council.govt.nz/where-it-goes पे। तमाकी तुरुकी, All Together Auckland।
5: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? Switch to Kashish Foods Ginger Garlic Paste, freshly ground in New Zealand, बिना added chemicals, बिना preservatives and vinegar free. सिर्फ clean, natural taste, बिल्कुल घर जैसा. Ginger हो, garlic हो या perfect combo, हर dish बनेगी full of flavor. और हाँ, buy any Kashish dosa batter, any size, और पाओ 250 grams ginger garlic paste बिल्कुल free. Limited time offer, 31st May तक. Kashish Foods, eat better, live better.
6: वेलकम टू कबाब्स किचन. आई एम शेफ एलेक्स और ये है मेरी गेस्ट सेरा.
7: क्या बनाते हैं कबाब को स्पेशल शेफ एलेक्स?
6: परफेक्ट ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस, टेंडर मीट और फ्रेश वेजिटेबल्स. हर कबाब बनता है विद लव एंड पैशन.
7: वाओ, दीस कबाब्स आर अमेजिंग. स्पाइसेस एकदम राइट एंड मीट इज सो जूसी.
6: ये है अम्मास कबाब्स प्रॉमिस, डिलीवरिंग हैप्पीनेस बाइट बाय बाइट. अम्मास फूड एट योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी और हलाल बुचरी स्टोर्स.
7: 100% ऑथेंटिक एंड प्योर एज मदर्स लव.
8: प्रोफेशनल फाइनेंशियल्स है साथ आपके. लोन और इंश्योरेंस एक छत के नीचे. नो ब्रोकर चार्ज, बस ट्रस्टेड एडवाइस. हर डील बनाए परफेक्ट राइट.
9: रीफाइनेंस के लिए कंपेयर करें डिफरेंट बैंक्स. लोन प्रोसेस हो सिंपल एंड फ्रैंक.
8: बिजनेस फाइनेंस या इनकम प्रोटेक्शन हो, हर स्टेप पर गाइडेंस परफेक्ट हो. सब कुछ मिलेगा यहीं. अपना फ्यूचर सिक्योर बनाए.
9: प्रोफेशनल फाइनेंशियल सॉल्यूशंस, योर फ्यूचर आवर प्रायोरिटी. कॉल 09846-9934 और सर्च PFSL. T's and C's, lending and credit criteria apply.

0: दौड़ में आप अपनी पसंद की चीजें नहीं कर पाते। आपको फीजी कीर्तन पसंद है, लेकिन पता नहीं कब और कैसे सुने। हम फीजी कीर्तन संग्रह पर आप जब चाहे तब अपने फेवरेट कीर्तन का मजा ले सकते हैं। हम फीजी कीर्तन संग्रह, दुनिया का पहला 24/7 फीजी कीर्तन प्लेटफॉर्म। डाउनलोड करें रोवा ऐप या hum.rowa.nz पर सुने।
1: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric Blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
2: पुरानी गाड़ी और महंगा फ्यूल कब तक चलेगा? स्विच टू लीप मोटर C10 और B10 अल्ट्रा हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक सिर्फ 44,990 प्लस ऑन रोड से शुरू। विजिट आर्मस्ट्रॉन्ग्स लीप मोटर ग्रीन लेन और बॉटनी। T's and C's apply. Smile.

0: Sunday Breakfast.
1: Sunday Mood Meter on Hum.
2: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. सो बॉलीवुड मूवीज जो रिलीज होने वाला है न्यूजीलैंड में स्टारिंग ऑफ चांद मेरा दिल इस थर्सडे या फिर फ्राइडे को. वी हैव अनन्या पांडे और लक्ष्य. उसके बाद वी हैव दृश्यम 3 मलयालम मूवी जो ऑल्सो रिलीज होने वाला है थर्सडे को मई 21 को. एंड वी ऑल्सो हैव जून 5 में है जवानी तो इश्क होना है. This is going to be releasing June 5th.

आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. इफ यू आर बिग फैन ऑफ रग्बी, दिस माइट बी अ मूवी दैट माइट इंटरेस्ट यू. ये मूवी का नाम है लोमू. ये रिलीज होने वाला है सितंबर 3rd को, एंड इट इज अबाउट द ऑब्वियसली द लेजेंडरी ऑल ब्लैक्स प्लेयर जिनका नाम है जोना लोमू. एंड yeah, इट्स अबाउट हिम, हिज एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट and how he changed the game forever. Ye movie release hone wala hai September 3rd ko. So if you're a massive All Blacks fan, I'm sure you would love

0: जो फील हो टिकल योर टेस्ट बड्स.
1: आप सुन रहे हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. आज बहुत एक्साइटिंग मेला होने जा रहा है. इट्स गोना स्टार्ट इन एन आवर. ये इवेंट का नाम है भोजन मेला, फूड कार्निवल, एंड इसका लोकेशन है 378 आरारीमू रोड, रामारामा, साउथ ऑकलैंड में. एंड 11 बजे से इट्स गोना स्टार्ट इन एन आवर एंड एंड होगा 4 PM में. एंड दिस इवेंट, दिस कार्निवल की पर्पज़ है टू सपोर्ट लॉर्ड वेंकटेश्वरस टेम्पल प्रोजेक्ट. एंड उस It's such an exciting event क्योंकि इसमें free entry है, free soft drinks, free खाना भी from शिवानी restaurant और इडली सांबर. And आपको shopping करने बहुत पसंद है, then there's some exciting jewelry as well as clothing stalls. और आपको मेहंदी भी लगानी है, then there's some henna artists available at the mela. And like, you know, आपका पक्का मेला vibes, like it's gonna be so fun. And बच्चे के लिए there's face painting, bouncy castle भी, so बहुत मज़ा आएगा. एक घंटे में शुरू होगा. इट्स एट 378 आरारीमू रोड, रामारामा, साउथ ऑकलैंड.

0: ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा।
1: पूरी प्लानिंग से आए हैं, शत प्रतिशत तुमको सुबह यहाँ से ले जाएंगे।
2: रमन ने बड़ा कमाल का आंसर भेजा, लेकिन मेरी बीवी को सोना पसंद है बट बारिश में भीगना पसंद नहीं है। ये क्या क्या मतलब, क्या मैसेज कर रहा
3: है? बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से रमन,
2: मेरे को समझ भी नहीं। एक दो तीन दिनों से अपनी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, एक दिन और इन्होंने
3: किसी और की बीवी के पीछे पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी ना, इसलिए अपनी बीवी के पीछे पड़ा है।
0: द ब्रेकफास्ट शो विद वीजे एंड पूजा,
4: ब्रॉट टू यू बाय फॉर्च्यून विद होल ग्रेन्स एंड एसेंशियल विटामिंस। फॉर्च्यून फ्यूल्स एवरीवन, बिग और स्मॉल, ब्रिंग होम द फॉर्च्यून।
0: वीकडेज 6 to 10 a.m.
5: Forget counting sheep, count the savings at Briscoe's with a huge 25 to 60% off the entire store. Plus, shop 60% off Cozy Home Super Savers, like all Zip Electric Blankets 60% off. Hurry, end Sunday at Briscoe's. See online for T's and C's.
6: हम सभी सही तरह से रिसाइकल करना चाहते हैं, तो याद रखिए प्लास्टिक 125 को रिसाइकल करें और धरती को जीवित रखें। सही तरह से रिसाइकल करना आपके हाथों में है। सर्च करें ओकलैंड काउंसिल रिसाइकलेबल आइटम्स, तमकी तुरुकी, ऑल टुगेदर ओकलैंड।
7: कुकिंग का असली फ्लेवर चाहिए? स्विच टू कशिश फूड्स जिंजर गार्लिक पेस्ट, फ्रेशली ग्राउंड इन न्यूजीलैंड, बिना एडेड केमिकल्स, बिना प्रिजर्वेटिव्स एंड विनेगर फ्री, सिर्फ क्लीन नेचुरल टेस्ट, बिल्कुल घर जैसा। जिंजर हो, गार्लिक हो या परफेक्ट कॉम्बो, हर डिश बनेगी फुल ऑफ फ्लेवर। और हाँ, बाय एनी कशिश डोसा बैटर एनी साइज और पाओ 250 ग्राम्स जिंजर गार्लिक पेस्ट बिल्कुल फ्री। लिमिटेड टाइम ऑफर 31st मई तक। कशिश फूड्स, ईट बेटर, लिव बेटर।
0: Brewing good vibes, Sunday style.
8: Sunday breakfast on Hum.
0: Zaika to feel ho. Tickle your taste buds.
2: आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ। इफ आपके पास रोवा की ऐप है, देन यू ऑलरेडी वन स्टेप अहेड ऑफ एनीवन हु डजंट हैव द ऐप। सो इफ आपके पास वो ऐप नहीं है, देन प्लीज़ गो एंड डाउनलोड रोवा ऐप ऑन योर डिवाइस। आप प्ले स्टोर में भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर ऐप स्टोर में। बेसिकली क्या होगा कि आप चर्डल सर्च कीजिए, CHURDLE, एंड ये एक गेम जहाँ पे आप $100 जीतने का मौका है। सो एवरी डे, नॉट जस्ट लाइक वंस अ वीक, एवरी डे आपके पास ये चांस है। सो मेक श्योर कि आप अपनी डेली चर्डल कीजिए, क्योंकि यू कैन ओनली प्ले इट वंस अ डे। And to be able to be in the draw to win, you have to figure out ki wo kiwi phrase kya hai and submit your answer. Hints bhi hoga, so don't worry, it's not that hard. Sometimes you have to, you know, use a bit of like thinking. But sometimes it's very easy. So, Rover app download kijiye aur Jurdle kheliye, and you might be winning $100 cash today, ya fir tomorrow.

फ्लैट बीस को चाहते हो या ब्रीज मोर एज रॉक या माई एफएम के वाइब्स, मीडिया वर्क्स के पास हर प्लेटफॉर्म का मैजिक है और आउटडोर एडवर्टाइजिंग का भी, बसेस बिलबोर्ड्स ट्रेन स्टेशन स्ट्रीट फर्नीचर, डिजिटल हो या स्टैटिक, वीव का

आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. एन ऑकलैंड बेस्ड स्किन केयर ब्रांड जिसका नाम है लेमन एंड बीकर, उन्होंने बहुत बिग सक्सेस, सेल आउट सक्सेस किया है साउथ कोरिया में विद वन ऑफ द प्रोडक्ट्स विच इज़ कॉल्ड द मनुका क्लिनजिंग बाम. बहुत डीप क्लिनजिंग बाम है एंड इट वॉज सो पॉपुलर कि इट्स हैज़ बीन सोल्ड आउट कंसिस्टेंटली. एंड उन्होंने पहली ईयर में ही दे हैव मेड अ सेल ऑफ $3.7 million. दैट इज़ क्रेजी. एंड वेन आस्क्ड अबाउट इट टू को फाउंडर विकी, उन्होंने बोला कि डिसाइडिंग टू लॉन्च इट इन कोरिया वॉज देयर डिफाइनिंग मोमेंट. एंड दे सेड, शी सेड कि audience, the consumers, the customers in South Korea really understand skincare. So when you bring a product with genuinely innovative ingredients, thoughtful formulation and real results, the market will absolutely respond. And obviously the results are right there. And if you didn't know, South Korea mein bahut mante hai for like skincare. Some people have like 9 to 10 steps in the skincare. Like I personally, my skincare routine is only face wash, and उसके बाद moisturizer, कभी कभार I put face mask, but that's about it. But I know that that's why South Korea की skin, it's so very glowy and very like, I don't know, they say they call it glass skin, क्योंकि you can see that glow and like वो चमक, you know. And yeah, but like, and I understand कि obviously the product must have been so good that it's sold out. But don't worry guys, ये ऑकलैंड में भी रीलॉन्च, लाइक यू नो, लेके आएंगे. ओह माय गॉड, वो ये प्रोडक्ट ऑकलैंड में भी लाने वाले हैं. इज दैट द वर्ड? नो, दे गोना बी ब्रिंगिंग इट टू ऑकलैंड एज़ वेल. एंड दिस प्रोडक्ट हैज़ बीन पैक्ड विद बी विटामिन्स एज़ वेल एज़ सी एंड ए एंड बंच मोर. एंड इट हार्नेसेस मनुका एक्सट्रैक्ट फॉर एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज. सो इट्स लाइक अ very great deep cleanser. So yeah, I am looking forward to try it out and I'll let you guys know ki isme kya hai wo magic jo constantly South Korea mein sell out ho raha hai. If you're also someone who has a long you know skincare routine, ya fir even chota sa aapka skincare routine kya hai, let me know 5599 par.

आप सुन रहे हैं हम 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. आमिर खान के बेटा का मूवी जुनैद खान की मूवी रिलीज़ हो चुका है एक दिन. अनफॉर्चुनेटली अकॉर्डिंग टू बॉक्स ऑफिस इट हैज़न्ट डन द बेस्ट, बट सम पीपल हैव एंजॉयड वॉचिंग इट एंड सम पीपल ऑब्वियसली हैव मिक्स्ड रिव्यूज. आई हैवन्ट वॉच्ड इट येट सो आई डोंट नो व्हाट आई वुड से, बट मैंने जब ट्रेलर देखी थी देन आई वाज लाइक ओह आई रियली लाइक इट, आई रियली वांट टू वॉच इट. सो आई हैवन्ट हैड द टाइम टू वॉच इट येट बट आई विल डेफिनेटली वॉच इट सून. बट इन अ रीसेंट इंटरव्यू उन्होंने अपने बोला था कि हाउ एक्चुअली मैं आमिर खान वॉज नॉट एक्चुअली प्रोड्यूसिंग दिस मूवी. सो जब उन्होंने जब जुनैद खान वॉज रीडिंग द स्क्रिप्ट उनको बहुत अच्छा लगा एंड ही वॉन्टेड लाइक अ सेकेंड ओपिनियन. सो लाइक एनी वन, यू नो, वेन वी वॉन्ट वन वी आर इन डाउट और वेन वी वॉन्ट अ सेकेंड, वी आस आर पेरेंट्स और सम वन हु वी नो ट्रस्ट. एंड लाइक वाइज जुनैद खान ने भी अपने पापा आमिर खान के साथ ही सेट डाउन एंड शोड द स्क्रिप्ट. एंड आमिर खान एक्चुअली रियली रियली लाइक द स्क्रिप्ट, ही लव्ड द नरेशन. सो ही went to Siddharth P. Malhotra, जो original producer था ये movie के लिए. So Aamir Khan went to Siddharth and said कि let me produce it Siddharth, I want to make it, I really love it, so sell it to me, I have finally gotten the chance to make a film for my son. And so yeah, so that's how Aamir Khan became the banner, the producer for this movie. And then yeah, so that's so wholesome ki you know that they got to work together. But saying that, Jin Khan is also very mindful because he said ki obviously it's a big banner and it takes time, and Aamir Khan can take his own time making ek movie 5 saal mein, but for him he's still new, so he can't just wait 5 years to release a movie. So he said ki he still wants to work more movies and get them out, you know, as they come, because Aamir Khan apparently has again suggested to make a film for his son because he really enjoyed making that one with him. Very wholesome, very cute, but I can see where Junaid Khan is also coming from, because as a son he's just starting his, you know, movie career, so he's like, oh papa, in a bit. So when Aamir Khan asked him, oh let's make a movie together, he actually said, we will, but for now, like, let me quickly, which I respect. Because obviously, he's also hustling and trying to find his foot in the industry. And I love that he's already aware ki, huh, yeah, I guess he can make movies with his dad, but he wants to already, you know, prove him, put his space, make his space out there in the industry.

आप सुन रहे हैं 104.2 FM और मैं हूँ आरजू आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग मॉर्निंग और बहुत मज़ा आया आपके साथ. बट नेक्स्ट वीक आई विल बी हियर, मेरी छुट्टी है नेक्स्ट संडे, बट आई विल बी बैक एट द एंड ऑफ द मंथ 31st मई को, एंड आई कांट वेट टू चैट विद यू देन. टेक केयर, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू सून.

बीते लम्हों को अब हर पल जिए हम रिवाइंड के साथ। एक ऐसा सफर जहां हर गाना एक याद है, हर सुर एक कहानी। हम रिवाइंड, जहां संगीत सिर्फ सुनाई नहीं देता।